नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 12 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। और इस समय सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी

0: की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आपी अहमद और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरूआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियनशिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 309। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 12। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के, ये होगा युगल गीतों का कार्यक्रम। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30 और सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित होगा संगीतकार जय किशन पर, आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। आज दिन में 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो, पत्रकार लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत, संपादन सहायक प्रस्तुति जुबैर खान की। दिन में 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर तय कीजिए विविध भारती के साथ दिन में 1 बजे, जिसमें श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार दिन में 2:15 पर और सदाबहार नगमे 2:30 पर। मनचाहे गीतों को लेकर आज हमारे साथ आप सुनिए कार्यक्रम दिन में 3 बजे और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। नाट्य तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3:30 पर। आज आप सुनेंगे नाटक कल आना कल, एच तुंडीराज के कन्नड़ नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक HV रामचंद्र राव, निर्देशन निर्मला अग्रवाल। दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3। आज आप सुनेंगे प्रस्तुति तेजश्री कामले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत दी जाएगी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, शाम 7 बजे विशेष जयमाला, गीतकार हसरत जयपुरी, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा, हवा महल में सुनो कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, कहानी का नाम पिंजर का भाग 2, वाचन ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। कार्यक्रम का समय रात्रि 8 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर और समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे होगा छाया गीत, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे मैटिनी शो।
ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। और अब ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज सुनिए रामचरित मानस का भाग 309, लंका कांड।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूत बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं,

कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है, मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो। ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्मपालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आज 12वीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। मित्रों, इन दिनों जारी है श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, और किराना घराने की गायकी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी,

0: पिछली कड़ी में हम विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी की जो आवाज में मिठास है और जो कोमलता है उनके स्वरों में, उसकी बात हो रही थी। उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
1: आज मुझे लगता है किराना घराने की आवाज की जो मिठास रहती है, सुरों की कोमलता, ये दोनों चीजें हमारे घराने की एक पहचान है। किराना घराने में लय से अधिक,
0: जी
1: शुरू में मैंने बोला है, लय से अधिक स्वर की शुद्धता और सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता
0: जी,
1: है।
0: जी।
1: मधुर और कोमल स्वर का लगाव जो है हमारा, प्रत्येक स्वर को अत्यंत कोमल, मधुर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है,
0: जी,
1: जिससे गायन अत्यंत श्रवणीय बनता है। स्वर्ग का दीर्घ विस्तार, एक एक स्वर पर हम ऐसा ठहराव है, एक एक स्वर को हम ठहराव के साथ गाकर उसकी पूरी अनुगुंज और गहराई को उभारते रहते हैं। सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग, स्वरों के बीच की सूक्ष्म श्रुतियां अत्यंत बारीकी से उपयोग किया जाता है।
0: अच्छा।
1: और जिससे गायकी में हमारे निखार आता है, हमारे यानी किराना घराने के गायकी को क्रेडिट मैं मेरे लिए नहीं लेती, घराना के लिए। मींड और आंदोलन का जो सुंदर प्रयोग हम करते हैं, स्वरों के एक दूसरे से सहजता और निरंतरता के साथ जोड़ने के लिए मींड और आंदोलन का प्रभावी उपयोग किया जाता है। भावपूर्ण अभिव्यक्ति केवल स्वर की शुद्धता ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से राग का भाव भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है।
0: अच्छा।
1: अन्य घरानों से भिन्न क्या है, ऐसा अगर आप पूछे, अन्य घरानों की तुलना में किराना घराने की विशिष्टता उसकी आवाज की स्वाभाविक मिठास, सुरों की कोमलता तथा प्रत्येक स्वर को अत्यंत भावपूर्ण, धैर्यपूर्ण और मधुर ढंग से प्रस्तुत करने की शैली में निहित है। यही स्वर माधुर्य इस घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान प्रदान करता है।
0: जी।
1: मिठास जो आती है वो गा के स्वर को हम जैसा बनाते हैं, तालीम लेते हैं, वहां शुरू होता है। अगर आपकी आवाज ओरिजिनल गिफ्टेड मिठास है उनकी आवाज में, तो और भी हीराबाई जैसा आवाज और मिठास और माधुर्य बन जाता है। आज अगर आपकी इजाजत हो तो किराना घराने के गायकों ने कुछ नाट्य गीत भी गाए हैं।
0: मैं वही कहने वाला था कि बहुत से किराना घराने के मूर्धन्य गायक कलाकार महाराष्ट्र में और कर्नाटक में हुए हैं। और महाराष्ट्र में जो एक संगीत नाटक की परंपरा रही है, तो वो जो स्वर्णिम युग था संगीत नाटकों का, उन दिनों में बहुत से किराना घराने के गायकों ने संगीत नाटकों में,
1: हीराबाई बड़ोदेकर, सवाई गंधर्व, माणिक वर्मा,
0: इन सब के स्वरों में जो है नाट्य गीत हम सुनते हैं।
1: बहुत ही अच्छा नाट्य गीत,
0: कुछ नाट्य गीतों की हम झलक सुने ऐसा मैं चाह रहा था।
1: हीराबाई बड़ोदेकर प्रत्यक्ष स्टेज पर बहुत ही अच्छा नाट्य संगीत गाती थी, लेकिन बहुत सारे नाट्य गीत उनके रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हमारी गुरुजी बोलती थी बहुत मीठा गाती थी वो।
0: जी जी।
1: उनका एक नाट्य गीत हम सुनेंगे।

0: विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी के आवाज में नाट्यगीत की झलक हम सुन रहे थे। इसके साथ साथ शकुंतला जी, क्यों ना माणिक वर्मा की गाय में बहुत से नाट्यगीत है,
1: मेरी मन
0: उसमें
1: का।
0: से किसी एक नाट्यगीत को एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ अगर सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: मान अपमान नाटक
0: जी
1: का जो खरा तो प्रेमा,
0: जी जी
1: थोड़ा सा मिश्रमांड वगैरह है उसमें,
0: हाँ।
1: वो बहुत ही अच्छा गाई है वो,
0: तो सुनते हैं इस नाट्य गीत की एक झलक।
1: हाँ

0: मानापमान नाटक के इस नाट्य गीत की झलक अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, और इसे सुनते हुए जो गीत के सुर जो है मन में, वो हृदयनाथ मंगेशकर जी का कंपोजिशन है लेकिन फिल्म से।
1: कौन सा भी गीत होने दो, उसको एक उसकी लोक संगीत की बैठक होती है। वैसा नाट्य गीत भी हम वे अलग अलग शास्त्रीय संगीत से, लोक संगीत से लिया है। ये भी जो केसरिया बालम ये जो गाना है वो राजस्थानी लोकगीत है ओरिजिनली।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसको लेकिन
0: और ये मांड भी जो है वहाँ राजस्थानी लोक संगीत से
1: आया है,
0: आया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं लेकिन फिल्म से ये रचना।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, आज संगीत की दुनिया की बात करेंगे। संगीत की दुनिया में कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर दिल को उतनी ही खूबसूरती से छू जाती हैं। ऐसी ही यादगार धुनों के रचनाकार थे जयकिशन। शंकर जयकिशन की जोड़ी तो कमाल की थी ही, उनके बारे में सभी ने सुना भी है और आज उनकी यानी कि जयकिशन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए सुनते हैं उनके संगीत से सजे कुछ सदाबहार गीत। सदाबहार नहीं, हम कहेंगे कुछ भूले बिसरे गीत जो कम सुनने में आते हैं मगर दिल को छू जाते हैं। तो आइए आगाज करते हैं बरसात फिल्म के उस गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में ये गीत फिल्म आवारा से। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन की धुन।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आपको बता दें, शंकर जयकिशन ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सदाबहार धुनें दी। उनकी संगीत शैली में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकप्रिय संगीत का भी खूबसूरत मेल था। आइए अब आपको सुनवाते हैं अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

ये था रोशन का संगीतबद्ध किया गीत। आगे और भी ऐसे गीत आपको सुनवाएंगे जिसकी धुनें बनाई हैं शंकर जयकिशन ने। इस समय भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं काली घटा फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी ने इसके बोल लिखे हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए हम आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये अगला गीत। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, तलत महमूद ने स्वर दिया है, फिल्म का नाम दाग।

आ फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र ने लिखा था, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई थी। और अब आइए आपको सुनवाते हैं राजहट, इस फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

आज के भूले बिसर गीत इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शंकर जयकिशन इस जोड़ी के संगीतबद्ध किए हुए कुछ नगमे। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कीजिए कुछ पलों का इंतजार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आगाज करते हैं कार्यक्रम का किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम कल आज और कल। शैली और शैलेंद्र ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन की धुन।
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या

लता मंगेशकर और मुकेश का गाया गीत अब सुनिए संगम। इस फिल्म से शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं आंख मिचोली। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में ये गीत उजाला फिल्म से। शैलेंद्र की रचना है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत। इस गीत को शब्दबद्ध किया है शैलेंद्र ने और सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: ये तो बताओ कि तुम।
2: मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी का गाया ही गीत सुनिए हमराही फिल्म से, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

हमराही फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। आज के कार्यक्रम में आपने सुने शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए हुए कुछ नगमे। इसी के साथ हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम से दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। कल मिलेंगे फिर इस कार्यक्रम में, कीजिए तब तक इंतजार। और अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां यह देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
6: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा

0: आपके लिए हैं ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब

0: केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में। जूनियर एशिया कप में लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ते के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुत तेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ लाती है। अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना या एकांत में होना। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने भी पड़ते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा और रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिंदगी के सफर में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफर में कोई साथ दे दे तो अच्छा, और ना दे तब भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ही प्रस्तुत होना पड़ता है।

अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है, बेचैनी होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझा बुझाकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वे भले ही संसार के सम्मुख हों, लोगों से घिरी हों, लोग उनका उपभोग करते हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति एकांत के माहौल में ही होती है। एकांत में ही उनका प्रकटीकरण होता है, एकांत में ही वे अपना साकार रूप लेती हैं। इसलिए चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणास्पद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हो या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इसे हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें।

आज से 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हजारों लाखों फ्रेंड्स के बीच भी कोई अकेला हो सकता है, पर सोशल मीडिया के साथ हम इसे बखूबी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर होना और बात है, जबकि वास्तविक जीवन में कोई सचमुच अपना होना दूसरी बात। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट की धूम के चलते दुनिया भर में पल भर में संबंध बनाना आसान लग सकता है। हम अपने दोस्तों को संदेश, ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पर इन सब में कोई ऐसा अपना ढूंढना जो आपको आपकी अकेलेपन से निकाल सके, काफी मुश्किल होता है। इतनी सारी सोशल साइट्स के बावजूद अकेलापन अभी भी एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति अपने साथी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स नहीं, अपने सचमुच के दोस्तों और अपनों से अपने विचार मिलकर बांटें, हंसें और हंसाएं। परिजनों, माता पिता, पार्टनर, बच्चों, भाई बहन और दोस्तों से हमेशा जुड़े रहें, उनके काम आते रहें, उनकी समस्या का समाधान जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आप मदद लेते हैं तो दूसरों के मददगार भी बने। ये बेहद जरूरी है आज के इस समय में, जब हजारों की भीड़ होते हुए भी हम कहीं न कहीं अकेलापन, तन्हाइयां महसूस करते हैं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करेंगे योद्धा फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है बी प्राक ने, मनोज मुंतशिर की रचना है, तनिष्क बागची ने इसकी धुन बनाई है।

शान, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजों में सुनिए जय हो फिल्म का ये गीत। समीर और अनजान ने इसे लिखा है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं द शौकीन्स। इस फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में, आरको का गीत और संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारियां। इस फिल्म का गीत मोहम्मद इरफान, गजेंद्र वर्मा की आवाजों में, गीत संगीत मिथुन का।

साथियों, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस आज है। ये हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग, ज्ञान, तकनीक और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन

0: और सतत विकास जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने का प्रयास करते हैं। ये दिवस वैश्विक एकजुटता और साझी प्रगति का संदेश देता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रोग्राम है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं हीरोपंती फिल्म का गीत, मोहित चौहान की आवाज में कौसर मुनीर की रचना, साजिद वाजिद का संगीत।

विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के प्रति जागरूक करना और आपात स्थिति में सही समय पर मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दुर्घटना, चोट, जलने या अचानक तबीयत बिगड़ने पर दी गई तत्काल और उचित प्राथमिक चिकित्सा कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रोताओं आप भी इस बात को लेकर जागरूक नहीं हैं, तो आप भी सीखें और अपने आसपास रहने वालों को भी बताएं, इस बात की जानकारी दें कि प्राथमिक उपचार किस तरह किए जाते हैं जो किसी भी आपातकालीन या इमरजेंसी की स्थिति में काम आते हैं और ये किसी की जान बचा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। तमंचे इस फिल्म से मोहित चौहान की आवाज है, गीत और संगीत कृष्णा का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: और अब सुनवाते हैं हम टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा है शरीफ तोशी का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए अब आपको सुनवाते हैं हंसी तो फंसी। इस फिल्म का गीत चिन्मय श्रीपाद, शेखर राव जियानी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और विशाल शेखर का संगीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह का गाया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। सोहेल सेन की ने इसके गीत को सुरों में ढाला है और फिल्म का नाम गुंडे।

बैंग बैंग इस फिल्म का गीत अब सुनिए विशाल ददलानी की आवाज में, और गीत है विशाल ददलानी का, संगीत विशाल शेखर का।

बैंग बैंग इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हिंदी फिल्म संगीत के समुद्र में गोता लगाएं तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

दरअसल शंकर जय किशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जय किशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जय किशन है।

ये गीत संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाने लगे। आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाड़ी लाल जी से हुई। फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

0: रास्ता।
1: नियति का खेल देखिए कि कुछ ही समय के बाद जय किशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीत का जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते थे।

बात यह है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहां से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर करें।

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

दरअसल जयकिशन रोमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

जय किशन ने प्रेम विवाह किया था। वे बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुने बनाने के साथ साथ जय किशन शायरी और कविता के भी बड़े शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था।

दोस्तों, ये जिक्र उन गीतों का है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने बनाई थी फिल्म दिल अपना और प्रीति पराई।

0: मन की नियत।
1: दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीतकार जय किशन एक सीधे सादे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जय किशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

सन 1971 में 39 वर्ष की छोटी आयु में संगीतकार जय किशन ने इस संसार को अलविदा कह दिया।

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
6: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी, उन्हीं के स्वर में, आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है। माया क्या करे क्या न करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे। उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिल के तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। दिल की तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में। अब जिद छोड़ो, मुंह ना मोड़ो, खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती है, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती। खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं ना कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नज़र अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। FM के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है, तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना। माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है। पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खतों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यह संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहां कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत उसे मिले ही हैं, उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है अलग अलग।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है शक्ति।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला और शिकायती गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है नगीना।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अमित कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रपट संगीत में अगला और अंतिम गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है चालबाज।

0: दोस्तों नमस्कार, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका सर।
1: राजेश जी, जो आपका सबसे बड़ा काम है वो मुंबई को लेकर है। आपकी कई किताबें हैं, जो मेरी नजर सबसे ज्यादा पड़ी वो आमची मुंबई सीरीज की दो किताबों पर पड़ी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुंबई

0: अब आए। और दूसरा ये कि ये जो मुंबई पर काम करने का सिलसिला, एक के बाद एक के बाद एक मुंबई पर आपकी किताबें आ रही हैं, ये कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए, मैं 1989 में मुंबई आया,
0: जी
1: अमेठी से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। तो जो मेरा पहला ठिकाना बना
0: हाँ
1: चर्चगेट इलाके में, और वो है मुंबई यूनिवर्सिटी के राजाबाई टावर के ठीक सामने, महर्षि कर्वे रोड पे वो बिल्डिंग है,
0: अच्छा
1: क्वींस कोर्ट। और अगर आप देखें तो जो वास्तविक मुंबई है वही इलाका है चर्चगेट के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में। जितनी चीजें हैं मुंबई को लेके, चाहे इतिहास से जुड़ी हो या संस्कृत से जुड़ी हो या राजनीति से जुड़ी हो या मुंबई के विकास के जुड़ी हुई, सारी की सारी चीजें उसी 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी। चाहे विक्टोरिया टर्मिनस हो, चाहे और भी चीजें हो, लायन गेट हो जहाँ नौसेना विद्रोह हुआ था,
0: रीगल
1: या
0: टॉकीज, राजाबाई
1: रिगल
0: टावर,
1: टाकुइज हो, ओवल
0: चर्चगेट
1: मैदान हो,
0: स्टेशन, ओवल
1: क्रॉस मैदान
0: मैदान,
1: हो,
0: जी
1: आजाद मैदान हो, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। तो उस इलाके में रहते रहते मुंबई के बारे में मुझे प्रेम जगा, एक मोहब्बत जगी, जिसको आप इश्क कह सकते हैं। तो मैं मूल रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने के लिए आया था। तो
0: अच्छा
1: मेरे बैच के जितने भी लोग थे वो एक एक करके समय आने पर मुंबई से ट्रांसफर करवा के अपने गांव की ओर चले गए। लेकिन मुंबई के प्रति प्रेम की वजह से मैं रुका रहा, और 1990 के आसपास फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो पहला मतलब मेरी नजर में आया कि जिस शहर ने मुझे रोजी रोटी दी है, उस समय तो रोजी रोटी ही थी, नाम और सम्मान की कोई बात ही नहीं थी, संघर्ष का दिन था। तो मैंने सोचा कि मुंबई पे लिखना शुरू करना चाहिए। और आप ये देखिए, विसंगति देखिए कि मैं गंभीर लिखता हूं मुंबई पे, लेकिन जो मैंने पहला लेख लिखा था वो जो था, ये था, यह है बॉम्बे मेरी जान, और वो व्यंग लेख था मुंबई पे, वो
0: हो
1: मेरी शुरुआत थी।
0: जी, जिस इलाके से आपने शुरू किया, आपने बताया कि क्वींस कोर्ट वाला इलाका था जहां आपकी रिहाइश बनी, साउथ बॉम्बे का वो इलाका जहां चारों तरफ इतिहास बिखरा हुआ
1: बिखरा
0: है, और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो भी उसी
1: इलाके
0: इलाके में
1: में।
0: है, तो आपका जो आना जाना, आपका जो काम काज है, वो पूरा साउथ मुंबई में हुआ। वो कौन सी चीजें थी दक्षिण मुंबई की जिन्होंने आपको बहुत फैसिनेट किया?
1: वो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मेरे सामने वो राजाबाई टावर मुंबई यूनिवर्सिटी का, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको पता होगा वाटसन होटल,
0: बिल्कुल, जहां मुंबई
1: जिस
0: का पहला सिनेमा दिखाया
1: यस
0: गया।
1: पहला ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने वहां पहला सिनेमा दिखाया। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े लोग, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके मार्क ट्वेन तक, उस वाटसन होटल में ठहरे। और एक बात और भी, आज तो 5 स्टार 7 स्टार का जमाना है सर, उस जमाने में जब स्टार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये वाटसन होटल जो है 7 स्टार के तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता था। जब मैं वाटसन होटल से गुजरता था 1990 के दशक में, तो मुझे जब मैं लगता था उसकी हालत देख के, बाद में तो उसका रिनोवेशन होने लगा, तो मैं देखता था तो मैं सच में अंदर से रोता था कि जिस होटल ने, जिसमें ल्यूमियर्स ब्रदर ने पहली फिल्म दिखाई, और जो होटल इतिहास का गवाह है, आप देखिए उसकी दुर्दशा।
0: ना लोगों को ये पता
1: और
0: है कि ये वो जगह है, ना कोई बोर्ड
1: कुछ नहीं,
0: है
1: और या
0: ना।
1: आप क्रॉफर्ड मार्केट की ओर अगर थोड़ी दूर पे जाएं चर्चगेट इलाके से 1.5 किलोमीटर दूर, तो क्रॉफर्ड मार्केट की भी दुर्दशा। इस तरह की चीजों को देख के जो मेरे मन में आया कि मुंबई पे लिखना चाहिए। और थोड़ी दूर पे लायन गेट था,
0: जी,
1: आपको
0: नेवी का।
1: पता है कि रॉयल नेवी का जो बहुत बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी शुरुआत वहीं से हुई।
0: बॉम्बे और कराची वाला,
1: वो जो विद्रोह था बॉम्बे वाला,
0: हाँ
1: और वो एक साथ कई जगहों से हुआ है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आप सब पता होगा क्योंकि आप भी मुंबई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि वो जहां पे ये महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय है, वो
0: जी
1: जगह पहले कब्रिस्तान थी, मेडम पॉइंट एक जमाने में। क्योंकि इस इलाके में पूरा का पूरा इतिहास बिखरा है। हालांकि सर मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, मैं
0: जी
1: विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन वहां से जो मुंबई को लेके एक रुचि उत्पन्न हुई वो बराबर चलती रही। 2012 में मुंबई पे मेरा पहला काम आया, एक मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद।
0: वो क्या पुस्तक थी?
1: मराठी पुस्तक थी मुंबई तील गुनेगारिंचा एनसाइक्लोपीडिया, मेरे मित्र श्री प्रभाकर पवार जी की मराठी में पुस्तक, वो दैनिक सामना से जुड़े थे। और 1993 से मैं दोपहर का सामना से जब जुड़ा तो मैंने 2012 में उसका अनुवाद किया, मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया। ये मुंबई पे मेरा पहला
0: मतलब क्राइम वाला पूरा काम जितने डॉन हुए हैं।
1: जी मेरी दिलचस्पी थी और फिर उसके बाद चलता गया और 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि पूरे के पूरे 5 सालों तक दोपहर का सामना में मेरा एक कॉलम छपता था आमची मुंबई, मुंबई के इतिहास पे।
0: उसमें आप लगातार इतिहास पर काम करते थे
1: लगातार। और 2019 में मेरी पहली किताब आई आमची मुंबई।
0: जी
1: और जब आमची मुंबई आई, आपने बात की आमची मुंबई 2 की, जब आमची मुंबई आई 2019 में तो वो आमची मुंबई जो है वो अखबारी लेखन था। अखबारी लेखन की एक सीमा होती है और मुंबई पर काम करने की सर मेरी भूख इतनी थी कि किसी अखबार के कॉलम से वो मिट नहीं सकती थी। तो 2019 से, क्योंकि कई कई कहानियां इतनी रोचक थी, इतनी बड़ी थी कि वो अखबार के कॉलम में समाहित हो नहीं सकती थी, तब मैंने 2019 में आमची मुंबई 2 पे काम करना शुरू किया जो पिछले साल 2025 में आई।
0: क्या बात है। तो दो बड़ी किताबें मुंबई के इतिहास पर ये नजर आती हैं और उसके अलावा मुंबई के माफिया पर भी आपकी किताब है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि मुंबई के इतिहास पर काम करना इतना आसान नहीं है, तो किन लाइब्रेरीज की और ग्रंथों की खाक छानते हुए आपने तथ्य जमा किए और ये कितना मुश्किल था?
1: वो एक बड़े इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक ये है कि हम उससे कोई सबक नहीं लेते। जब हम इतिहास पे शुरू करते हैं तो हमको अपना जो नजरिया है बहुत विस्तृत करना पड़ता है। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो आज इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जो है अगर किसी पे भरोसा करता हूँ इस मामले में ग्रंथालय की, तो दो है। पहले नंबर पे एशियाटिक लाइब्रेरी है, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी प्रचार सभा की लाइब्रेरी है, और जो मेरे संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का पुस्तकालय भी है वो बहुत समृद्ध है।
0: अरे गजब।
1: वहाँ हिंदी अंग्रेजी मराठी की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, रेफरेंस की पुस्तकें हैं, तो वहां से मैंने शुरू किया। इस बारे में मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, लगातार रिसर्च करता हूँ। मैं सर आपको रिसर्च का एक उदाहरण देना चाहूंगा
0: जी,
1: कि आम धारणा है कि मुंबई जो है 7 द्वीपों से बनी है, उसमें मुंबई द्वीप जो मुख्य द्वीप है और माहिम है, फिर कोलाबा है, मझगांव है, वर्ली है, ओल्ड वुमन आइलैंड है, लिटिल कोलाबा है, इस तरह के 7 द्वीप हैं, आम धारणा है। लेकिन हकीकत यह है कि आप किस तरह से कहते हैं कि मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। मेरी पुस्तक आमची मुंबई 2 का पहला लेख है वह 7 द्वीप जिनसे मिलकर मुंबई बनी, लेकिन उसी पुस्तक में 7वां लेख है क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। हकीकत में आप 7 द्वीप कहते कैसे, वो थियरी आई कहां से? मुंबई पे इतिहास के शोध किया है मिस्टर टिम राइडिंग ने, बहुत बड़ा शोध है उसने। उनका कहना है कि 7 द्वीप नहीं थे, जो 7 द्वीपों की बात है तो वो 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो मिथक और भ्रांति से आई। एक्चुअली वो जो द्वीपों की संख्या है 4 से 6 है ओरिजिनल। रॉबर्ट मर्फी ने इस प्रश्न को उठाया भी, उन्होंने एक नक्शा भी बनाया जिसमें 4 या 6 द्वीप, क्योंकि वो 2 को गिनते नहीं थे, मझगांव और परेल उनकी नजर में द्वीप अलग अलग नहीं थे,
0: वो लैंडलॉक एरिया है।
1: हाँ, लेकिन उसके बाद हकीकत में जो 7 द्वीपों की थियरी आई सर, वो ईस्वी सन 150 में टॉलेमी का एक ग्रंथ है ज्योग्राफिका, पूरा नाम है लेंडास द ज्योग्राफिका, यानी कि भूमि का भौगोलिक शास्त्र। उसमें जो है मुंबई यानी पूर्व में स्थित एक जगह का जिक्र जो है हेप्टानेशिया के रूप में किया गया है। हेप्टानेशिया का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है सात। तो जो सात का मिसकंसेप्शन

0: है वो उधर से आया, ओरिजिनल वो 6 द्वीप से ज्यादा नहीं थे। तो हमको इस चीज को खोजने के लिए जो टिम राइडिंग का शोध था, बहुत लंबा चौड़ा शोध था, तो मैंने कम से कम उसकी 3 जगहों पे क्रॉस चेकिंग की, जो यहाँ लिखा है वो सच है क्या। क्योंकि जब हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किताब के जरिए, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि कभी किसी पाठक ने ये बताया कि सर ये आपने गलत लिखा है। तो उसमें मैंने 2-3 लाइब्रेरी की खाक छानी और कई कई चीजें हमको मिली, तो उससे लगा कि नहीं, जो टिम राइडिंग का शोध है वो अपनी जगह पे सही है, रॉबर्ट मर्फी का भी शोध सही है, जॉन थॉर्नटन का एक नक्शा था वो भी सही है। तो इस ढंग से इस शोध में होता है, एक सिर्फ छोटी सी घटना, एक छोटे से प्रसंग को लेके मैं इस शोध की बात और आगे बढ़ाऊंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, आजादी की पहली लड़ाई, तो वो और जगहों की तरह मुंबई में भी हुई। मुंबई में हुई का मतलब यह है उसको करने की कोशिश की गई। मरीन बटालियन के कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने मिलके ये योजना बनाई। उनकी योजना थी कि नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे मुंबई में। लेकिन उस जमाने में मुंबई का कमिश्नर था चार्ल्स फोरजेट। फोरजेट का जो इंटेलिजेंस था वो बहुत गहरा था, बहुत अच्छा था। तो सोनापुर यानी मरीन ड्राइव के इलाके में, मरीन लाइंस के इलाके में क्रांतिकारियों की, सैनिकों की बैठक होती थी। फोरजेट खुद भेष बदल के उसमें गया उस बैठक में, और वहां से ये योजना जो है, इस योजना का पर्दाफाश हो गया। मुंबई पुलिस ने, चार्ल्स फोरजेट ने उस क्रांति को जो है उसको एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया, और कई लोगों को उसमें सजाएं मिली, जिसमें 2 लोगों को आजाद मैदान में, उस जमाने में कांपा का मैदान कहा जाता था, तोप से, तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। 2 सिपाही, मंगल गडरिया और सैयद हुसैन। चूंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिशों का शासन था, तो किसी भी पुस्तक में मंगल गडरिया और सैयद हुसैन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलता है।
1: जी
0: मुझे खोजबीन के दौरान कम से कम एक ही मुद्दे पे मैं 6 महीने लगा था, तो कहीं से सिर्फ इतना पता चला कि मंगल गडरिया जो था वो मूल रूप से गोंडा के गांव का निवासी था, और सैयद हुसैन लखनऊ के आसपास के। तो ये मेरी, अभी भी मुंबई के कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों का ओरिजिन अगर किसी ने खोजा या थोड़ी सी ही जानकारी मिली, तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने खोजा। लेकिन उसमें 6 महीने सिर्फ एक ही तथ्य खोजने में चले गए। इतिहास के साथ सर ये होता है।
1: जी, तो इतनी मशक्कत करने के बाद तथ्य आपने जमा किए। इन दिनों आप किस किताब पर काम कर रहे हैं?
0: इन दिनों का ये है मेरी पुस्तक साहित्य और मुंबई। और एक्चुअली मुंबई के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि यहाँ साहित्य सृजन की, लेखन की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है, और ये शहर प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो साहित्य और मुंबई में मैंने 5 भाषाओं पे फोकस किया है। जैसे मुंबई के साहित्य, संस्कृति और इतिहास पे लिखी गई पुस्तकें, नॉन फिक्शन, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी। इसी तरह मुंबई को लेकर लिखे गए उपन्यास, इन 5 भाषाओं में उनका जिस्ट, उनका सारांश। मुंबई पे लिखी गई कविताएं इन 5 भाषाओं में, मुंबई पे लिखी गई कहानियां इन 5 भाषाओं में। मतलब इस तरह के काम हुए हैं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, सन 1817 में शहर की पहली शहरी जीवनी उर्दू में छपी।
1: वाह वाह,
0: लेकिन वो छपी कहाँ? मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में,
1: लखनऊ। अरे क्या
0: शहर
1: बात
0: की
1: है।
0: पहली जीवनी। तो
1: हाँ
0: आप उसमें इस तरह की किताबों का जिक्र देखेंगे, बुक ऑफ बॉम्बे को पढ़ेंगे, मुंबई च वृत्तांत पढ़ेंगे, मुंबई च वर्णन गोविंद नारायण माडगांवकर की किताब है,
1: जी
0: और जेम्स मैकलिन की गाइड टू बॉम्बे, इस तरह की किताबों पे पढ़ेंगे, और बहुत सारी हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी की किताबों, कहानियों और कविताओं की चर्चा उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे।
1: जी तो ये भी बहुत मशक्कत का काम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है।
0: पिछले साल जुलाई से चल

0: रहा है उस पे शोध, और अभी 3-4 महीने और लगेंगे सर,
1: तो क्या
0: क्योंकि
1: देश के अलग अलग इलाकों में जाना पड़ता है या
0: नहीं
1: मुंबई में काम
0: मुंबई
1: चल जाता है?
0: मुंबई पे काम, मुंबई की लाइब्रेरियों में काम, मतलब इस तरह के विद्वानों से मिलना जो साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी गुजराती मराठी उर्दू के विद्वानों से, लाइब्रेरियों में जाना, पढ़ना, उधर से तथ्य निकालना।
1: मुंबई माफिया पर जो आपने काम किया है, ये इतिहास कितना पुराना है?
0: ये बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जब से ये मोस्टली जो इतिहास है 1950 के दशक से,
1: आजादी के
0: जब
1: बाद का खेल है।
0: आजादी के बाद के दशक का, तब छुरे और गुप्ती वाले थे, उन्होंने शुरू किया, और दूसरी बात 60-70 के दशक में वो गोल्डन गैंग वगैरह लोग आए, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 80 के दशक से मुंबई माफिया का प्रभुत्व तो बहुत तेजी से शुरू हुआ। हाँ, जब वो हाजी मस्तान, करीम लालदा, शुक्र नारायण बकिया, दाऊद वगैरह का तो बहुत बाद में प्रवेश हुआ, फिर मतलब धीरे धीरे आज भी है, लेकिन अब हम ये एक जमाने में मुंबई को हम माफिया सिटी बोल सकते हैं, लेकिन अब नहीं बोल सकते, अब तो बहुत शांत और बहुत सुव्यवस्थित और बहुत समृद्ध महानगर है आमची मुंबई, जिससे मुझे बहुत गहरा प्रेम है, तो इसलिए मुंबई के माफिया पक्ष की या मुंबई के निगेटिव पक्ष को मैं बहुत सिंबॉलिक रूप से कहता हूँ, उसकी बजाय मेरी नज़र में मुंबई के और जो सर्वसमावेशी संस्कृति है, मुंबई की समृद्धि है, सबको अपना बनाने की एक जो यहाँ की मिट्टी में तासीर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
1: मुंबई सदा से मिनी हिंदुस्तान रहा है, इसका फूड कल्चर, सिनेमा की संस्कृति, इन सब पर लिखा आपने।
0: हर तरह से, जब मैंने मुंबई पे कॉलम लिखता था तो मैंने मुंबई की नाइट लाइफ पे लिखा, सिनेमा पे लिखा, फिल्म स्टूडियोज की शोकांतिका पे मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, आमची मुंबई वन में वो लिखेंगे, और खान पान की जो संस्कृति है उस पे, उन सब पे भी मेरी कोशिश रही कि हर चीज यहाँ पे, मुंबई का जो भाषाई परिदृश्य है, मेरी उस पे भी एक पुस्तक आई है, मुंबई और हिंदी,
1: जी,
0: हिंदी को
1: तो
0: लेकर।
1: मुंबई में हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, ये भाषाएं मुख्य रूप से चलती हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान है। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों के लोग यहाँ पाए जाते हैं। इस पर आपने गौर किया है?
0: बिल्कुल गौर किया, मुंबई में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा कुल 16 भाषाएं हैं जिनको मुंबई की मुख्य भाषा होने का दर्जा प्राप्त है, और
1: सोलह भाषाएं।
0: हाँ, 16 जो मुख्य भाषाएं हैं, और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि मुझे जैसे आपने मिनी हिंदुस्तान की बात की, मैं वो कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मुंबई या महाराष्ट्र और मुंबई पूरे देश में इस वजह से अलग है कि मुंबई की सर्वसमावेशी संस्कृति है, दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं यहाँ पर आपको उन धर्मों के लोग मिल जाएंगे, और उनमें एक जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, उनके दर्शन होंगे, इसलिए मैं मुंबई को मिनी हिंदुस्तान से ज़्यादा एक लघु विश्व का दर्जा देता हूँ, जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर देश के लोग मिल जाएंगे।
1: ये जो लघु विश्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे पकड़कर हम दूसरी दिशा में जरूर जा सकते हैं, जहां मुंबई में दूसरे देशों के लोगों की रिहाइश बहुत रही है, इजरायलीज, ईरानी और ब्रिटिश, अमेरिकन्स, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। आपका एक काम है आजादी की लड़ाई और मुंबई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन आता है 9 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942 कह लें हम, जो ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। लेकिन कांग्रेस रेडियो, या मैं ये कहता हूं कि 20वीं सदी से पहले की लड़ाई क्या थी आजादी की?
0: नहीं, मुंबई का आजादी की लड़ाई में जिसका आपने जिक्र किया, अगस्त क्रांति, उसके अलावा भी है,
1: एक
0: वो
1: उषा मेहता
0: एक,
1: का कांग्रेस रेडियो
0: हाँ,
1: था।
0: उषा मेहता जी और लोगों ने मतलब उसको शुरू किया था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि किस ढंग से जुड़ा है, ये जो नारे हैं, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या करो या मरो, या
1: जी
0: साइमन गो बैक, ये
1: जी
0: 2-3 महत्वपूर्ण नारे पूरे देश में गूंजे, लेकिन ये नारे गढ़े किसने? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये गढ़े मुंबई कर यूसुफ मेहर अली जी ने,
1: ओ हो,
0: उन्होंने मतलब क्विट इंडिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो या साइमन गो बैक, महात्मा गांधी जी मतलब ने यूसुफ मेहर अली जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इस तरह को, इस चीजों को किस तरह से कर सकते हो? तो उन्होंने ये दो तीन नारे गढ़ के दिए और पूरे देश भर में गूंजे। साइमन गोबेक के नारे, वो पंजाब में भी गूंजे या पूरे देश भर में। एक और महत्वपूर्ण इस मामले में एक और है जो आजादी की लड़ाई में मुंबई के योगदान से संबंधित है। एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
1: जी
0: मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
1: बाबा
0: ये कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक का नारा है।
1: जी
0: लोकमान्य तिलक जी ने इसको फेमस किया, इसको विख्यात किया, लेकिन ओरिजिनली इस नारे को लिखा और गढ़ा जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने। मझगांव में उनके नाम पे गार्डन है। तो मुंबई में इस तरह की कहानियां हैं। और मैंने आपको,
1: ये तो बहुत शॉकिंग है।
0: हाँ यस, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 1857 में मेरठ में और जगहों पे क्रांति, मुंबई की क्रांति का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं आता,
1: जी
0: लेकिन वो बॉम्बे प्लाट के नाम से, अगर आप इतिहास को
1: हाँ
0: खंगालेंगे
1: यस
0: तो
1: यस
0: बॉम्बे प्लाट के नाम से ये पूरी की पूरी क्रांति, जो मैंने सैयद हुसैन और मंगल गडरिया की कहानी बताई आपको, जो प्रसंग बताया वो पूरा का पूरा है। और अक्टूबर 1857 में, 10 अक्टूबर 1857 को मंगल गडरिया और सैयद हुसैन को आजाद मैदान में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। तो मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी अच्छा, भारत में जो रेलवे मूवमेंट शुरू हुआ
0: हाँ
1: वो तो जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुआ, और 1853 में जो मुंबई से ठाणा तक ट्रेन चलाई गई थी, और इस रेल मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ रेल मूवमेंट के बारे में ये सपना था कि एक रेलवे होना चाहिए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि जगन्नाथ शंकर सेठ, नाना सेठ ने इस बारे में बहुत सारा काम किया था। उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई, उसके बाद इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनी, जिसका विलय ब्रिटिश सरकार की संस्था में हुआ और वो 1853 में वो ट्रेन चली। लेकिन ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मुंबई सीएसटी से लेके थाना तक उस जमाने में, मतलब रिहाइश जो है एकदम ये थी, और दूसरी पहाड़ियां थी छोटी छोटी, और जो इलाका है मझगांव वगैरह या जहां से रेल गुजरती थी, या आगे चल के पुल बनाना है, बहुत कठिन काम था। और लोग ये कहते हैं कि ये सब ब्रिटिश सरकार की वजह से ही संभव हुआ। अगर ब्रिटिश सरकार न होती तो 1853 में जो मुंबई से थाना तक पहली ट्रेन चली, वो ट्रेन चल नहीं पाती।
1: जो रेलवे स्टेशंस थे वो तो आज जहां हैं वहां से बहुत अलग जगहों पर हुआ करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: तब के जमाने का जो भौगोलिक वो डेमोग्राफी थी सर, तब के जमाने की अलग थी और आज के जमाने की अलग थी।
1: तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात
0: हाँ,
1: की।
0: तब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इस तरह की जगहों पे रेलवे स्टेशन होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्बल के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जमीन से बहुत ऊपर हैं, तो वो इसी कॉन्सेप्ट का नतीजा है।
1: जी बहुत बढ़िया, आपसे तो बातें जो हैं वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, पर बहुत अच्छा लगा मुंबई के इतिहास पर जिस तरह से आपने काम किया है। आमची मुंबई 1, आमची मुंबई 2, मुंबई माफिया, मुंबई और हिंदी, मुंबई और साहित्य, ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत दिलचस्पी जगाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए, और मुझे लगता है कि जब हमने सब चीजों की बातें की तो चलते चलते मुंबई पर एक फिल्मी गाना भी आपकी पसंद का सुनवा लिया जाए।
0: सिर्फ यही है, जरा हटके जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान,
1: सीआईडी फिल्म का ये गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज है, सुनते हैं ये गाना।
2: ए दिल।

0: गए मेरी जान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश विक्रांत जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर।
3: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
4: ये विविध भारती है, दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय

0: द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है महान संगीतकार शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जय

0: किशन की यादों से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान संगीतकार जय किशन दया भाई पांचाल को, जिन्होंने शंकर के साथ मिलकर शंकर जय किशन की सबसे सफल और लोकप्रिय जोड़ी बनाई थी और भारतीय संगीत का नक्शा बदल दिया था, तो आज हम याद कर रहे हैं और आज हम सुनेंगे महान संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत से सजे सवरे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जंगली।
1: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं।

0: जो भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,
1: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है श्री 420।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है कन्यादान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है धरती।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

0: उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

कार्यक्रम में अगली आवाज है मुकेश की। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है आशिक।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दीवाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है राज हट।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने सुने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे कुछ यादगार सदाबहार गीत। आज शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की याद का दिन है। साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हमसफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एक चीज कयामत है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देखा तुम्हें देख के माना वो ठीक कहा करते थे। जिंदगी में रस्में ये कस्में सभी तोड़ के चले आओ, लेकर मौजों का सहारा बना लेंगे हम तूफान में किनारा। वहां सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने, आती है जब ये रुत मस्तानी बनती है कोई ना कोई कहानी। अब के बरस देखे बने क्या फसाना, कितनी खुशियां कितने गम इस जिंदगी के दिन कितने कम, दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं। हमसे मत पूछो कैसे यह किस्सा है अपनों का, गहरी नदी से ज्यादा मन में शोर, सबको किनारे पहुंचाकर माझी तो किनारा कभी पाएगा। तो सुरीला सफ़र के हमारे बहुत सारे साथी हम सफ़र बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में बन के हम सफ़र आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश और कमेंट्स। हम सफ़र वही है जो मुश्किलों में भी कहे तुम मुस्कुराओ बस एक बार, पलकें उठाओ जब भी सावन की फुहार बरसती है, मन मयूरा नाच उठता है और दिल का सूनापन दूर हो जाता है। शाम ढलते ही जब दिए जलते हैं तो गम के बादल छट जाते हैं और उम्मीद की एक नई सुबह मुस्कुराने लगती है। अधूरी ख्वाहिशें अपने सपने बुना करती हैं जो गाहे बगाहे दिल की उमंगों को जगा देती हैं, फिर दिल ये महसूस करने को मजबूर हो जाता है काश ये सपने साकार होते, सपनों की दुनिया क्षणिक ही सही एक सुखद एहसास तो दे जाती है। जैसे सीता राम राधा श्याम मिले, कभी ना कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। जब जीवन में कोई चाहत अधूरी रह जाती है तो मन उसे भूलने के बजाय कल्पनाओं में जीवित रखता है। मन में जो अधूरापन होता है वो सपनों और उमंगों से भरी एक दुनिया बनाता है जहाँ कोई बंदिश बंधन नहीं होते, बस उमंगों का सैलाब होता है जो हमें जीने की आशा देता है। और आज़ाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। एक दोस्त ने हमें मैसेज लिखा है, कहीं मोहब्बत की आहट, कहीं सपनों की उड़ान, कहीं जिंदगी के गम और कहीं किनारे की उम्मीद। बहती जाती है ये नदी कल कल गाती नदी, खेतों को पानी देती है सबकी प्यास बुझाती है, पर्वत से ये निकलकर रास्ता अपना बनाती है सागर तक जाने की धुन में, कभी ना थकती है चलती जाती आगे आगे, दुख सारे सबके ये भोगे, जीवन का संदेश यही है बढ़ती जाना आगे आगे। इतनी सुंदर कविता भेजने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। राजा एक सीधा सादा हाउस बोट चलाने वाला लड़का और रीता एक अमीर लड़की, दोनों के विचार अलग अलग, सादगी खुलापन रहन सहन का अंतर, अमीर गरीब वर्ग की सामाजिक दूरियाँ टकराव, कई उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद

होती है प्यार की जीत और राजा और रीता हो जाते हैं एक। तो हमें बताइए कि राजा और रीता की भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार कौन थे और इस गीत को कहाँ फिल्माया गया वो भी बताएं। साथियों साथ में हमें ये भी बताइए कि नदी में, नाव में, शिकारे में, नदी किनारे में इस वक्त आपको कौन कौन से गीत और फिल्में याद आ रही हैं वो भी हमें बताएं।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। शशि कपूर, नंदा आगा, शमी, कमल कपूर और इस गीत की शूटिंग कश्मीर के श्रीनगर इलाके की खूबसूरत वादियों और डल झील में की गई थी। आपके कुछ कमेंट्स हम और पढ़ेंगे। आज की इबारत में नदी, तालाब, शिकारी पर गीतों का संगम है जो एक बेहद खूबसूरत भावना

शुक्रिया। प्रेम रूपी गहरी नदी में जो शोर रूपी लहरों के साथ नैया हिचकोले खाती नजर आती है, तब किनारे पर ले आता है साथी का साथ और तूफानों से गुजर कर किनारे लग ही जाता है सच्चा प्यार। हमारे सभी साथी जो प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं वो भी हमें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी किसी ने हमें लिखा है। अगला कमेंट है कि इस दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सुकून सुने जाने में नहीं समझे जाने में छिपा है। जीवन में सुनना एक दवा है, आधी दुनिया का दर्द सिर्फ सुनने से मिट जाता है, अंतर शब्दों में नहीं उसके कहने के ढंग में होता है। मन उस नाविक जैसा है जो सबको किनारे तक पहुंचा देता है लेकिन खुद अपने किनारे की तलाश में रहता है, फिर भी उम्मीद बनी रहती है क्योंकि यही उम्मीद हमें हर दिन आगे बढ़ने की आशा देती है। नदी थी खामोश, किनारा भी अनजान था, नाव में बैठा कोई दिल का अरमान था, माझी ने पतवार थामी तो समझ आया हर सफर को मंजिल से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। साथियों, हिंदी फिल्मों में नाव, बोट या कश्ती में बहुत सारे मशहूर और सुरीले गीत फिल्माए गए हैं, तो आज हम ऐसे ही गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो नाव में बैठे कलाकारों पर फिल्माए गए। तो आपको ऐसे कौन से गीत पसंद हैं या फिलहाल आपको याद आ रहे हैं तो लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। और ये भी बताइए कि आपने कश्ती में बैठकर कहां कहां की सैर की, इसके अलावा आपके इलाके, शहर, गांव, कस्बे में कौन सी नदी बहती है, क्या नाम है उनके, और आप भारत में बहने वाली कितनी नदियों के नाम जानते हैं। और जब नदी, झील, नाव, कश्ती, शिकारा की बात हो तो बताएं कि कभी हाउस बोट में रहे तो कैसा लगा। और अब बात अमर प्रेम की, एक ऐसे पवित्र और अनकहे रिश्ते की कहानी जो समाज के बंधनों से परे है। दो लोगों के दरमियान एक गहरा और कोमल रिश्ता जो आत्मिक और मानसिक जुड़ाव बन जाता है। तो हमें ये बताएं इस फिल्म का कौन सा संवाद है जो अमर हो गया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के फिल्म में निभाए गए किरदारों के नाम लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के पहले हिस्से में जो बाल कलाकार का किरदार था नंदू, तो बड़ा होने पर नंदू का ये किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए। पुष्पा और आनंद बाबू, मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हैड टीयर्स, और बड़ा होने पर नंदू का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम है विनोद मेहरा। बाल कलाकार थे मास्टर बॉबी, जिनका असली नाम था मासूमा, और साथी कलाकार थे बिंदु मदनपुरी, सुजीत कुमार और फरीदा जलाल। आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हम। जिंदगी के कई रंग हैं, कई सपनों की खूबसूरत दुनिया, कहीं अपने और पराए हैं, कहीं खुशियों की आहट है तो कहीं मन में उठता तूफान। एक माझी सबको नदी पार कराता है पर खुद किनारे की तलाश में रहता है, पर एक दिन समझ आया किनारा बाहर नहीं मन के भीतर है। वक्त के साथ इंसान खुशियों और गमों की धूप छांव से गुजरता हुआ अपनों से मिले अनुभवों के साथ थोड़ा संजीदा हो जाता है। दिन कितने भी कम हो, ख्वाब देखने की और तूफान को किनारा बनाने की चाहत ही इंसान को जिंदा दिल बनाए रखती है। एक साथी ने लिखा है, मैं पिछले सप्ताह ही कश्मीर की वादियों में समय गुजार कर आया हूँ। मैंने डल

झील में पत्नी के साथ गाना भी गाया, माझी नैया ढूंढे किनारा। गाने हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे हिम्मत हारे व्यक्ति के लिए तुझको चलना होगा। एक साथी ने लिखा है कि जब जब फूल खिले शशि कपूर नंदा और कश्मीर के डलहौजी में इसे फिल्माया गया था। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा और नेकी कर दरिया में डाल, मानो तो गंगा हूं ना मानो तो बहता पानी। हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया मेरा मन तेरी दो आंखों में। हुस्न पहाड़ों का, ऐसे मुहावरे और बहुत सारे गाने गीत जिसमें किसी नदी पहाड़ का नाम आया है तो लिख दे। और एक एक अभिनेता बैलगाड़ी चलाते हुए नदी सागर की बातें करते हुए नदी ताल तलैया का गीत गा रहे हैं, तो बता दीजिए कि कौन से अभिनेता हैं वो। एक गैम्बलर और उसका तेज तर्रार हमशक्ल सीआईडी पुलिस अधिकारी, दोनों की पहचान को लेकर रोमांचक और भ्रमित करने वाले मोड़ आते हैं। अंत में गैम्बलर और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर खतरनाक अपराधियों की साजिश को नाकाम कर देते हैं। तो बताइए कि द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन की दोनों भूमिकाओं के नाम क्या थे और उनकी दोनों नायिकाओं के नाम भी बताइए। और ये जो गीत अभी आप सुनने वाले हैं, ये किस देश में, किस लोकेशन पर इसे फिल्माया गया था, और इस गीत में जो गायक गा रहे हैं उनका नाम भी जरूर लिख दें।

साथियों, आपके जवाब हमने देख लिए और अभी पढ़ देते हैं। जय विजय अमिताभ बच्चन का नाम था उन दो किरदारों का, और जीनत अमान, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, इफ्तखार, मदन पुरी, हेलन रंजीत और सुजीत कुमार उनके साथी कलाकार थे। और इस गीत की शूटिंग हुई थी वेनिस इटली की बेहद मशहूर झील ग्रैंड कैनाल में गोंडोला नाव पर। और इस गीत के बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुनाई देती है अमोरे मियो, वो इटालियन भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय गायक शरद कुमार ने आवाज दी है। और बैलगाड़ी चलाते हुए जो गाना गा रहे हैं वो अभिनेता है संजीव कुमार। फिल्म का नाम है अनोखी रात, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। और भारत में बहने वाली नदियों के नाम भी हमें मिल गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती, चंबल, गंडक और घाघरा नदियां।

हमारे साथियों ने जो मैसेज भेजे हैं वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, और सबसे छोटी नदी अलवर के पास अरवरी नदी है, जो करीब 45 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। अनोखी रात ओरे ताल मिले नदी के जल में, सागर में संजीव कुमार। एक साथी ने लिखा है कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की क्रूज में 2 नाइट 3 दिन का सफर किया है मैंने। एक साथी मित्र ने लिखा है जिसका नाम है जीवन धारा।

उसका कोई नहीं किनारा। अगला कमेंट है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, बेटी और दामाद 2019 में केरल गए थे। तब हम बोट हाउस पर ठहरे थे, सुबह से पूरा घूम कर आए। दोपहर का खाना, नाश्ता और रात का डिनर भी बोट पर ही ठहर कर किया। दूसरे दिन सुबह बोट से बाहर आए, बहुत अच्छा दिन गया हमारा। देखिए, जैसे जैसा मैसेज आपने लिखा था, हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ दिया। साथियों, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये एक बेहद संवेदनशील और लोकप्रिय फिल्म है नैया, जिसकी कहानी गंगा नदी किनारे बने एक छोटे से गांव की है। ये फिल्म मानवीय रिश्तों, निस्वार्थ प्रेम, समाज के बंधन और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसमें कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं, और इस फिल्म नैया के निर्देशक का भी नाम हमें बताएं। तब तक सुनते हैं यही गीत, आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। सोनू और गीता की इस प्रेम और संघर्ष की कहानी का निर्देशन किया था प्रशांत नंदा ने, जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जरीना वहाब के साथ नजर आए थे। और इस गीत में आवाज आपने सुनी येसुदास की, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन, फिल्म का नाम था नैया। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मेरी जन्मभूमि सिंध नदी के किनारे बसा है मेरा गांव। एक साथी ने लिखा है कि मेरी सोच ये है कि जीवन में हम सफर ऐसा होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, जो एक बार अपने साथी का हाथ पकड़ ले तो ता उम्र छोड़े नहीं, अपने हम सफर का साथ मरते दम तक निभाए, यही तो सच्चा प्यार और सच्चा साथ है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे घर में कोई आ गया था तो आधा प्रोग्राम तो निकल गया। अगला कमेंट है कि मेरे शहर में गंगा है, थोड़ी दूर पर पुनपुन भी मिलती है और सोन भी मिलता है। गंगा नदी का प्रारंभ गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए दूरी तय करती हुई समुद्र में गिरती है। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें आवाज है मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है कटी पतंग। तो इस फिल्म के कलाकारों के नाम और साथ ही निर्देशक का नाम भी हमें लिखकर भेज दें।

साथियों, आपने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए और हमने पढ़ लिए। इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, अमीशा पटेल, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, दिलीप ताहिल, मोहनीश बहल और आशीष विद्यार्थी। और ऋतिक रोशन के दूसरे किरदार का नाम था राज। ऋतिक रोशन ने बचपन में कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था, जिनके नाम हैं आपके दीवाने, आशा, आसपास और भगवान दादा। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। हमारे एक साथी ने हमें लिखा है कि मुझे इस वक्त फिल्म 9-2-11 का मशहूर गीत आजा पंछी अकेला है याद आ रहा है। ये खूबसूरत गीत नाव पर सवार देव साहब और कल्पना कार्तिक पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रात के शांत समय में फिल्माया गया था। और रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस फिल्म के मुख्य पात्र थे। इन्होंने बात की है नैया फिल्म की। और एक साथी ने लिखा है कि नैया का हीरो प्रशांत नंदा हमारे कटक शहर का है और नैया सुपरहिट फिल्म उड़िया फिल्म शेष श्रावण का रीमेक है। दोनों फिल्म में फर्क इतना ही है कि उड़िया फिल्म में दुखांत है और हीरोइन नदी में कूद कर जान दे देती है और नैया का अंत सुखांत है। एक साथी ने लिखा है अपनी तो नीति यही है अपनी तो नीति यही काम है, आने जाने वालों को अपना सलाम है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। नर्मदा नदी लगभग 15 से 16 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है।

दोस्तों, ये जो गीत अभी आप सुनने जा रहे हैं, तो बताएं कौन सी झील में इस गीत को फिल्माया गया था और कौन किसको देखकर पानी में गिर गए? बताएं हमें भी, हम भी तो जाने कि इस गीत के गीतकार का नाम क्या है। जल्दी से लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, संगीतकार ओपी नैयर और गीतकार हैं शमसुल हुदा बिहारी, यानी कि SH बिहारी। और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की मशहूर डल झील में फिल्माया गया था, और निर्देशक हैं शक्ति सामंत। और अब चलते चलते आपके कुछ कमेंट्स। गंगा की लहरें में किशोर कुमार और कुमकुम नाव पर गंगा हरिद्वार में नजर आए। शमी कपूर गिर गए शर्मिला टैगोर को देखकर, बिल्कुल सही बात। और एक शिकायत भरा कमेंट भी किसी ने लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है कि आपने कभी मेरी टिप्पणी नहीं पढ़ी, अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे आसपास की लिखी हुई टिप्पणी को आप पढ़ती हैं लेकिन मेरी नहीं। तो देखिए, अभी आपका कमेंट हमने पढ़ दिया, बने रहिए हमारे साथ, ये वादा कीजिए।

आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

त्रिवेणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुत तेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है, तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ लाती है। अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना या एकांत में होना। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने भी पड़ते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा और रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिंदगी के सफर में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफर में कोई साथ दे दे तो अच्छा, और ना दे तब भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ही प्रस्तुत होना पड़ता है।

अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है, बेचैनी होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझा बुझाकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वे भले ही संसार के सम्मुख हों, लोगों से घिरी हों, लोग उनका उपभोग करते हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति एकांत के माहौल में ही होती है। एकांत में ही उनका प्रकटीकरण होता है, एकांत में ही वे अपना साकार रूप लेती हैं। इसलिए चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणास्पद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हो या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इसे हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें।

आज से 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हजारों लाखों फ्रेंड्स के बीच भी कोई अकेला हो सकता है, पर सोशल मीडिया के साथ हम इसे बखूबी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर होना और बात है, जबकि वास्तविक जीवन में कोई सचमुच अपना होना दूसरी बात। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट की धूम के चलते

चलते दुनिया भर में पल भर में संबंध बनाना आसान लग सकता है। हम अपने दोस्तों को संदेश ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पर इन सब में कोई ऐसा अपना ढूंढना जो आपको आपकी अकेलेपन से निकाल सके काफी मुश्किल होता है। इतनी सारी सोशल साइट्स के बावजूद अकेलापन अभी भी एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति अपने साथी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स नहीं, अपने सचमुच के दोस्तों और अपनों से अपने विचार मिलकर बांटें, हंसें और हंसाएं। परिजनों, माता पिता, पार्टनर, बच्चों, भाई बहन और दोस्तों से हमेशा जुड़े रहें, उनके काम आते रहें, उनकी समस्या का समाधान जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आप मदद लेते हैं तो दूसरों के मददगार भी बने। ये बेहद जरूरी है आज के इस समय में, जब हजारों की भीड़ होते हुए भी हम कहीं न कहीं अकेलापन, तन्हाइयां महसूस करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय

0: शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
1: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ।

0: है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: India's innovation.
3: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व तक।
2: From lab to market, from India to world.
0: नीस में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित

0: प्रसारित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है अपने हुए पराई।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज है किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है रंगोली।

0: साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
2: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है सन्यासी।

0: la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन. और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे. आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में. शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम.

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है शैलेंद्र, धुन है शंकर जय किशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों, आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गणेश पेठ पार्थी पुणे से, अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या, श्लोक और भैया, कोटवा नारायणपुर यूपी से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, कर्नाटक स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत, बडेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा, राजस्थान जोधपुर से अशोक बाणिया, प्रेमलता और सुमित बाणिया, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

साथियों, मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, आकाश जाधव और पवन राजे जाधव, गांव हिप्पर सोगा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख, लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला नंदिनी, मुस्कान नीलम और समस्त बामनिया परिवार, कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग शीतल, लोकेंद्र और राम बाबू मालवीय, ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषि, चिऊ माऊ और बिट्टू।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आरएसपुरी, बीकेपुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी, मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता कृष्णा, सावित्री राज, प्रथम राज, अंजलि पलक, अमीशा अनुष्का, आशीष लक्षिता, जतिन मनोहर लाल सोनगरा, सरोज दायमा, अखिल दायमा, एलेक्सा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश।

राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा, शानू और निमो। कोटदा बहादुर जिला मंदसौर एमपी से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाजियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी, जिला मोहाली, पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाजार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम, जावेद, उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ बीड़ शहर से पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडी राज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव, इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल।

0: साशा जी।
1: हैं? अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नक्काल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
1: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे आशा जी, आप तो बुरा मान गई हैं। लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं। शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, तंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है?
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबीलाल जी, आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
4: अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा, हैं? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: हाँ, अब तुम्हें कौन रोके भाई। हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुंचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
3: आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं?
1: मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूं आप ही की तरह, ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है।
0: नक्काल बाबू।

0: आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
1: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहाँ से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
2: बड़े साहब जी हैं
1: है? ये कैसा सवाल है? मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
2: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
1: अरे
2: वो कब आएंगे?
1: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
3: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था?
2: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
3: जी।
2: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
3: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
2: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
0: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
2: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
0: अच्छा,
2: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
0: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बाग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
2: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
1: इसीलिए इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
2: सर आप बुरा न माने तो एक बात को।
0: हाँ हाँ बोलो बोलो।
2: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
0: अरे श्रीमान जी हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
1: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
0: दफ्तर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
1: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
3: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
1: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ क्या नाम है आपका?
2: जी सत्यमूर्ति।
0: सत्यमूर्ति जी यहाँ आइए, एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना
2: जी?
0: आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
2: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना मैं आपका एहसान मानूंगा।
0: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा
2: जी?
0: अरे आपको क्या आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता?
2: जी जी जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ, इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
0: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई।
1: चौकन्ना टेलीफोन उठाना। ओ कहाँ मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
3: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
1: हिसाबी लाल जी।
0: सर आप सीनियर हैं।
1: ओहो ठीक है ठीक है, मैं ही उठाता।
0: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
1: लगता है। साहब जी आ गए, आज बहुत जल्दी आ गए।
0: लगता है साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
2: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं?
1: श्रीमान जी साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
4: पैसा मत आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की
0: बारी।

0: किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी,
1: बाबू
0: झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
2: नक्काल बाबू साहब जी आपको तलब कर रहे
1: मैं
2: हैं।
1: समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
3: आइए। नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है? स्टुपिड, मेरा मुंह क्या ताकते हो? जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
0: जी सर।
1: सर अब मैं साहब जी से मिल सकता हूं?
4: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा।
1: जी
4: हाँ, कल आना कल।
5: सजन कब आएगा, सजन कब आए।
4: चौकन्ना।
2: जी सर।
4: सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
2: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
4: क्या?
2: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
4: हिसाबी लाल जी,
0: जी
4: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
0: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है?
5: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो यह है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
0: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
4: कर लो।
0: आशा जी आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
6: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ?
0: ये भी ठीक है।
1: नमस्कार सर।
4: कहिए क्या काम है?
1: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
4: हाँ ठीक है ठीक है।
0: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं?
1: जी हाँ।
2: नक्काल बाबू,
4: हाँ
2: आपको साहब बुला रहे हैं।
4: हाँ ठीक है, आता हूँ। आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
7: नमस्कार सर।
3: नमस्कार। नक्काल बाबू
7: जी,
3: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
7: कहिए सर।
3: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है
7: जी,
3: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है,
7: ओ।
3: और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
7: ओ तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
3: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
7: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा?
3: वही तो मेरी समस्या है, अब जाऊं तो कैसे जाऊं?
7: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
3: नक्काल बाबू
7: जी,
3: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं
7: जी।
3: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते
7: जी। समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
3: ठीक है, सारे डेट्स ठीक तरह से नोट कर।
7: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ।
5: उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
0: अरे ये क्या रट रहे हो नक्काल बाबू?
7: साहब जी का टूर प्रोग्राम, 11 12 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
0: अरे वाह।
1: सर वो मेरा प्रमाण पत्र।
4: भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए, हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
1: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
4: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
0: सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं?
4: बिल्कुल,
0: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
1: तो फिर मैं कब आऊं?
4: कल आना, कल
1: कल कल तो इतवार है।
4: ओहो तो सोमवार को आइए, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
2: नकाल बाबू।

0: जी सर।
1: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
0: जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
1: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
0: पर सर, लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर, ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
1: खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड।
0: जी हाँ, होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए।
1: ये कैसी बातें करते हैं नकाल बाबू।
0: जी
1: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
0: जी
1: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना
0: जी
1: होगा और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
0: साहब जी, ये असल में सर्कुलर नहीं, सर्कुलर है।
1: खैर, अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए। उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
0: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 काफी मंगा लूंगा।
1: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
0: सर, आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगे।
1: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना।
0: जी हाँ साहब, हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर, तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
1: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
0: ओके साहब। सर, मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
1: अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम?
0: जी
1: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
0: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूँ।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ।
0: और भी कुछ होगा?
1: और क्या,
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: भाई चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ 1 रुपए में 1 पैकेट। क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से।
2: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर 2 पैकेट्स दो।
2: ये लीजिए। चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, 1 रुपए में 1 पैकेट। चना लीजिए चना।
0: अरे उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके। ओ चने वाले दादाजी,
2: जी
0: आइए जरा।
2: और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना?
1: दादाजी आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना?
2: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं? मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
0: क्या, आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
2: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
1: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
0: अच्छा, याद आया।

0: नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सत्यमूर्ति चलने वाला हूं। पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। चला भाई चला, दरबार गरम चला।
1: अब ये चना खाने से हमें प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी, इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध द्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
2: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
1: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
2: मैं आशावादी हूँ।
1: हाँ, तुम हो ही आशा।
2: कम से कम तुम जैसी सिनिक कवि तो नहीं हो।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
3: पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी
4: हिसाब। बिलाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
3: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
5: मिर्चे भी कुछ
3: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
6: नक्काल बाबू,
4: क्या
6: कोई एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
4: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
6: आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल?
0: हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
4: साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
0: अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
4: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर।
3: सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान है, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं।
0: हाँ, वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
4: उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
0: हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
3: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
4: ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए। बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
0: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
4: जी,
0: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
4: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
0: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
4: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
0: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
3: साहब जी, हमारे दफ्तर में

0: एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते हैं स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर? हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है, मैं उसे जानता हूं, मैं बुला लाऊंगा। बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
1: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हा?

0: हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली हैं। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना है। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहाँ मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित हों।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुला कर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबीलाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं। यही नहीं, वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और
4: गरम चना, बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए था, चना खाइए चना।
5: अजी महाशय,
4: बड़ा मजेदार चना है।
5: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ। अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही हैं। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: भाई चना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना मचा देगा। चना चना खाइए साहब, चना।
5: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा। आपको वहां ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
6: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
5: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
6: ओह समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
5: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
6: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र?
5: सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
7: सर, मेरी अर्जी
8: आज नहीं होगा, कल आना कल।
7: साहब जी मेरा प्रमाण पत्र। आप जाओ भी, कह दिया ना कल आना कल।
5: अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
6: क्या कहा, कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा।
5: क्या,
6: कल आना कल।
5: अरे सत्यमूर्ति जी मेरी नौकरी चली जाएगी।
6: हाँ भाई अब जाओ भी, कह दिया ना कल आना कल।

कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्वनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्षमाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉम्बे टॉकीज।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
4: उस
3: जहां
4: महफिल में
3: फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफी आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये, या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और somehow एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं, एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते हैं नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल, उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
3: बिल्कुल, और वो महफिल ही ऐसी होती है,
4: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो, पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इनका मानना है कि भाई जियो और जीने दो और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
3: तो बाबा आजमी ने आपको,
4: उन्होंने तो
3: एक राह दिखाई,
4: हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही है अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए, बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे। रियाज जब शुरू किए तो पता चला गले का जो चाम है
3: वो फ्लैट हो
4: वो
3: गया,
4: जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो दो साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
3: अरे बाप रे,
4: 2014 की बात है एफटीआई के बाद, और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट

0: बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई, और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो, तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना, बट वो वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, यू नो, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप, वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहाँ हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
1: वाह।
0: और फिर हम 2 साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए, डिप्रेशन भी आया उस फेज में, क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि आप दो जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे, तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
1: कैसे निराशा का सामना किया?
0: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
1: कितना लंबा चला ये?
0: ये चला कुछ एक डेढ़ साल।
1: किसकी मदद मिली?
0: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी, ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा, पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहाँ पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी, मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से, उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम, और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था,
1: अपने ख्यालों में गुम थे,
0: अपने ख्यालों में, और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे कि ये दूध उबल के गिर रहा है, और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
1: अरे बाप रे।
0: तो वो, यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन, हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब यू नो आई वाज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे, क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं और हम गाते भी अच्छा हैं, पर क्या हम ये कर पाएंगे, मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे, डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं, एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही चीज कराते हैं, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से, यू नो वैम्प है तो बदमाश ही है, वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे, अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
1: बहुत बड़े सवाल थे ये सब।
0: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
1: मेरा दिमाग घूम गया।
0: हाँ। और फिर हम, आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है। तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है। बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही हो तो फिर जल्दी नहीं चली जाए। तो हम बोले पता नहीं, 6 महीना, 1 साल। तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
1: क्योंकि ये ऐसे नहीं आ सकती,
0: ये ऐसे बात नहीं करती है। और फिर हम घर पहुंचे और वो 1 साल बहुत परेशान रहे। मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी, उनको, माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती, एक साथ होता है तो ढाढ़स बधा रहता है आपके पास। वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में, बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था। किशोर कुमार

0: के भक्त हैं हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था।
1: गजब,
0: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड डायरेक्ट
1: राइट,
0: ऑल्सो, और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी। पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है, तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है।
1: कैसे अपने आप को संभाला और इस एक साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
0: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था। तो थैंकफुली यू नो, आज आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं। तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है। यू नो, हम
1: इसमें
0: तो
1: इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद
0: की
1: भी लग
0: राय
1: सकती है।
0: मदद, हमको ये अंदाजा नहीं था।
1: हाँ,
0: हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास यू नो टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर, ये सब समझ ही नहीं था। हमको बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको, तो बस हम, दैट वॉज अ गुड डिसीजन।
1: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप
0: हाँ
1: की गोद की तरफ लौटती है।
0: हाँ
1: ये
0: ये
1: दुनिया की सबसे प्यारी बात है।
0: सबसे प्यारी बात है, और ये मेरा सौभाग्य है मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं, उसी उसी उसी समाज का हिस्सा है। पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी। कितनी बड़ी बात है ये,
1: बिल्कुल
0: वो भी तो मर्द ही है ना।
1: बिल्कुल,
0: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द, जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा, आपको यही पता है। बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है, और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद। बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो। तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते हैं, जाओ उड़ो, बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो। यू नो, बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पस स्टूडियो है, जैसे ये कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था, हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे। ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
1: और इसलिए आप संभल गए।
0: इसलिए हम संभल गए।
1: यहां एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल
1: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई
1: बिल्कुल पूरी तरह से
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार।
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में, वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है, क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में, हमने पैसे के लिए ये काम किया।

0: मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है। तो बोला वहां पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं। पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम। और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो या बनी जई हो बनी के जोगिनियार हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी दादी गाती थी वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
1: ओहो, ये बहुत बड़ा झटका था।
0: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है, उर्दू पोएट्री,
1: मनीष
0: जिसपे
1: गुप्ता
0: मनीष गुप्ता का,
1: का
0: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात
1: अच्छा,
0: भर।
1: ओ हो, वो आपने किया था।
0: जी
1: देखिए, मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक हैं।
0: जी तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये। और क्योंकि हम जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
1: खूब चलता है वो।
0: खूब चलता है, हमको आज भी बहुत
1: ओरिजिनली
0: मैसेज
1: छाया
0: आता है।
1: जी ने गाया है,
0: जी
1: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही हैं।
0: ओ कैसा ये सर्कल है,
1: हाँ
0: देखिए।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है। और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
1: और मैंने क्या समझा पता है,
0: हाँ
1: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने
0: जी
1: वो वीडियो बहुत देखा है,
0: अच्छा
1: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ कुछ
0: अच्छा
1: कविताएं पढ़ी हैं।
0: ओ हो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
1: दो कैमरों से।
0: दो कैमराज लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज भोजपुरी में। अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा, उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन,
1: हाँ,
0: उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे, उन्होंने
0: ढूंढ
1: ये
0: रहे थे।
1: ऐलान किया था।
0: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन।
1: वो भी हमारे दोस्त।
0: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा

0: देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है। तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है। और वो खूब चला
0: खूब
1: और
0: चला,
1: पूरी दुनिया में धूम मचाई।
0: बहुत चला।
1: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज
0: पार्किंग
1: वो भी मजेदार है। उसमें तो आपने पता
0: अरे
1: नहीं क्या क्या गाया है,
0: हाँ, उसमें तो
1: जब जो मर्जी आइए गाया है।
0: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
1: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है। मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है
0: ये
1: तो
0: दोनों पैरेलल ही शुरू हुआ।
1: पैरेलली शुरू हुआ और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे। पर हमने ये सोचा ही नहीं कि
0: हाँ,
1: ये
0: ये
1: मतलब
0: हम
1: ये बहुत
0: भी,
1: मजेदार है। मुझे ये
0: हाँ
1: आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूं।
0: ये कमाल है। 2017 पार्किंग लॉट सीरीज
1: और
0: शुरू
1: वो
0: हुआ,
1: भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला।
1: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा, मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, ए आर रहमान सुन ले हमको, बस। और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी,
1: और उन्होंने सुन ली।
0: और उन्होंने सुन ली।
1: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना था?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको,
1: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
1: उनका भी
0: उनका भी जन्मदिन है,
1: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
1: अरे बाप रे
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे ए आर रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, ए आर रहमान स्टार्ट फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि ए आर रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे, एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने सुने
1: सारे सुने
0: होंगे।
1: होंगे,
0: और
1: बिल्कुल।
0: यू नो, ए आर रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमको समझ आया कि ये यू नो, जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव
1: लाइव
0: गाएंगे,
1: गाएंगे।
0: क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके, और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माई इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मॉन्टी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
1: ये एक जरिया बना।
0: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और ए आर रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं, इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है, किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं।
1: वाह,
0: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में, अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा ये जो
1: लेकिन
0: शुरू
1: ये
0: किए।
1: 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
0: हाँ
1: कंफ्यूजन के साल
0: हाँ
1: थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया

0: इतना पावरफुल है, तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए। आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके। अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी, लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था, और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास प्लीज।
1: वाह वाह वाह,
0: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे, और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं,
1: उन्होंने कहा था
0: तो उन्होंने
1: इंस्टाग्राम
0: कहा
1: पे।
0: था इंस्टाग्राम
1: यस
0: पे।
1: बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
0: तो ये 3 साल पहले की बात है, मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही, पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था
1: कमाल
0: कि
1: है
0: पहुंचेगा।
1: वो पल जब आप गा रही थी, वो कितना सपनीला पल था।
0: ओहो कैसे बताएं हम हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहां रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी, और वहां पर हमको बुलाया गया था
1: चेन्नई में ए आर
0: चेन्नई में
1: रहमान स्टूडियोज
0: ए आर
1: में।
0: रहमान जी का जो स्टूडियो है, पंचतन नाम है उसका, वो उनका
1: हाँ
0: घर है, होम स्टूडियो है उनका।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम पहुंचे तो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में ए आर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और ए आर रहमान का एक गाना हो सोलो।
1: एग्जैक्टली ये बोला।
0: ये मेरे शब्द थे।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: जेवा पे
1: क्या
0: सरस्वती
1: बात है,
0: विराजती हैं भाई, विराजती
1: क्या
0: हैं,
1: बात है, क्या बात है, और ये
0: विराजती हैं।
1: संभव हुआ।
0: ऐश्वर्य ने बोला भी कि ए आर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि तो अब तुम सबको बता दो कि तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नज़र में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर ए आर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे, आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा ए आर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
1: अरे गजब,
0: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था,
1: एक एग्जैक्ट 6 महीने। और
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
0: जादुई है, जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
1: दीपाली, ये एक ऐसा गाना है, मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गईं, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुन कर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
0: जी जरूर।

0: जब आप ये सारे गाने की बात एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं,
1: जी
0: ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है,
1: जी
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीज़ों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट हैं हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर, प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में। वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे, तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
0: बहुत बड़ी
1: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके
0: संशय था।
1: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
0: बिल्कुल
1: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है। ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये वो ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं। ये जीनियसेस हैं ये लोग। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है, और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है, कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो,
0: वाह वाह।
1: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये
0: बिल्कुल
1: सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की। इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
0: बिल्कुल।
1: और
0: वो सुन
1: इंस्टेंट
0: के
1: अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
0: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी हैं,
1: आ
0: जो तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
1: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
0: कंप्लीट एल्बम है
1: कंप्लीट एल्बम है। यस,
0: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
1: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना। जिसने
0: अच्छा,
1: गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका,
0: बिल्कुल।
1: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस
0: उसको
1: गिटारिस्ट,
0: ये मौका दिया गया,
1: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है, रहमान
0: पर
1: सर है
0: हमको तो आपकी
1: सो
0: आवाज में सुनना है।
1: किसी में से

0: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे सामने,
1: नहीं थे जी,
0: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
1: जी,
0: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
1: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
0: क्या बात,
1: ये मेरे
0: है।
1: लिए बहुत बड़ी बात थी।
0: बिल्कुल,
1: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला
0: सोची
1: ना
0: नहीं
1: सपने
0: थी।
1: में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली, गुड
0: वाह
1: वर्क।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहाँ भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं, और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है।

0: उनके लिए एक समाधि जैसा है।
1: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद,
0: वाह वाह
1: और
0: वाह
1: उसके
0: वाह
1: अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम AR रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम,
0: ओ हो।
1: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने
0: क्या बात है, क्या
1: जी।
0: गाया?
1: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है,

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहां से उठाया इस गाने को,
1: हाँ
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा
1: एक
0: लगा।
1: ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं, ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मैं भी इसलिए शायद, वेरी गुड एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है, और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
0: असली रूह इनमें
1: असली
0: है।
1: रूह इनमें है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था, और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास, उस समय 500 व्यूज से 5,000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही
0: बिल्कुल
1: सारे
0: बिल्कुल
1: एहसास है,
0: बिल्कुल।
1: मुखड़ा तो रिपीट होता है,
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस था, क्या
1: तो
0: बात है
1: वो लोग अटकते हैं इसमें।
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है,
1: जी
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है,
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है, अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये,
0: क्या बात है,
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की हमने ऐश्वर्य की बात नहीं की तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
1: ऐश्वर्य से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी, और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्य ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे, और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे, हम भी
0: अच्छा,
1: ऑडिशन देने गए थे।
0: हाँ,
1: ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली हैं, बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो, तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है, तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था, तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है, पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
0: मतलब बरसों बाद।
1: बरसों बाद 2005 में हम उनको देखे थे।

0: 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे,
1: द
0: कि द
1: कंटेस्टेंट
0: कंटेस्टेंट
1: द
0: ऐश्वर्य जो
1: विनर
0: मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का, वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं? जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे। मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई
1: बिल्कुल
0: डार्लिंग
1: बिल्कुल
0: तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं,
1: वाह वाह वाह।
0: रफी भक्त हैं वो।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त, एक किशोर भक्त,
0: हाँ ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त।
0: करेक्ट, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है घर, ये घर में मुद्दा है हमारे
1: बिल्कुल
0: लिए
1: बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत
1: है ना, अपने
0: बहुत।
1: घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है, हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार हैं, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत
1: कड़ियल
0: दिमाग
1: होते
0: से
1: हैं।
0: सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहाँ एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह।
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो
1: कोमल
0: मुलायम
1: है,
0: है,
1: वाह।
0: ये बहुत खूबसूरत। और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं, पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: पूर्णता से है।
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम,
1: वाह
0: वो जो
1: वाह।
0: सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो
0: हाँ।

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ
1: यस, ये पार्किंग लॉट
0: गया।
1: सीरीज में
0: ये
1: था ये
0: बहुत
1: गाना
0: चला था क्योंकि उस
1: जी
0: वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर.डी. बर्मन।
1: जी
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी
1: ओह
0: धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो, लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज़ सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज़ हम ज़रूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं। चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों न खड़े हों, वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर,
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बजने को है प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

शाम की ठंडी हवा और दोस्तों की खिलखिलाहट मिलकर जैसे दिन भर की थकान चुरा लेती है। कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई बिना मांगे सलाह देता है और कोई बस मजाक करके माहौल हल्का कर देता है। सच्चे दोस्त शायद वही होते हैं जिनके सामने हमें खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके साथ चुप्पी भी बातचीत जैसी लगती है। कभी जीवन की बड़ी समस्याओं का हल किसी बड़ी किताब या भाषण में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर की गई एक सच्ची बातचीत में मिल जाता है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। दोस्तों चलिए कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो कि आज के दिन यानी कि 12 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि दुनिया के विकास की कहानी सिर्फ बड़े और ताकतवर देशों की कहानी नहीं है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दूसरे विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग भी वैश्विक प्रगति का एक मजबूत आधार है। जब ये देश अपने अनुभव, अपनी तकनीक, अपने ज्ञान और संसाधन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो कई ऐसी समस्याओं का समाधान निकल सकता है जिनका सामना वे लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। चाहे बात खेती की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की हो, डिजिटल तकनीक की हो या फिर जलवायु परिवर्तन की। दोस्तों एक दूसरे से सीखना इन देशों को आगे बढ़ने में मदद करता है। भारत की दक्षिण दक्षिण सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत ने कई देशों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, क्षमता निर्माण और विकास से जुड़े अनुभव साझा किए हैं। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सहयोग बराबरी और साझेदारी की भावना से होता है, यानी कि कोई किसी पर अपना मॉडल थोपने की बजाय एक दूसरे की जरूरतों और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना चाहता है। आज की दुनिया में जब चुनौतियां सीमाओं तक सीमित नहीं है, तब ऐसे सहयोग की जरूरत और भी बढ़ जाती है। एक देश में पैदा हुई समस्या दूसरे देश को भी प्रभावित कर सकती है। महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों का समाधान मिलकर ही खोजा जा सकता है। युवाओं के लिए भी दक्षिण दक्षिण सहयोग एक बड़ा अवसर है। शिक्षा, स्टार्टअप, विज्ञान, तकनीक और कौशल के क्षेत्र में देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, तो युवाओं को सीखने और अपनी प्रतिभा दिखाने के नए रास्ते मिलेंगे। दोस्तों हमें यह समझना होगा कि विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना भी है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले। दक्षिण दक्षिण सहयोग इसी साझा सोच को मजबूत करता है। जब देश एक दूसरे की ताकत बनते हैं, तो विकास की रफ्तार भी बढ़ती है और दुनिया में भरोसे का माहौल भी बनता है। यही इस सहयोग की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
1: दोस्तों, चलिए कार्यक्रम में अब बात करते हैं विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के बारे में। दोस्तों, यह दिवस हमें एक ऐसी बात याद दिलाता है जिसकी जरूरत कभी भी और कहीं भी पड़ सकती है। दुर्घटना हो, अचानक चोट लग जाए, किसी को चक्कर आ जाए या फिर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, ऐसे समय में अस्पताल पहुंचने से पहले की जो मदद होती है वह बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब डॉक्टर बन जाना नहीं है, बल्कि आपात स्थिति में सही तरीके से शुरुआती सहायता देना है, क्योंकि यही जो सहायता होती है वह किसी भी व्यक्ति को बचाने में सबसे कारगर साबित होती है। कई बार लोग घबराकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी जानकारी हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर जानकारी विस्तारित तौर पर लोगों को दी जाए, चाहे वह सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से या फिर किसी कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं उस संस्था में इस बात की जानकारी दे, तो लोग ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में युवाओं की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि युवा समाज में किसी भी आपात स्थिति के दौरान जल्दी मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भी शुरुआती सहायता और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा जो जरूरी बात

0: ये आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में जानकारी हमारे हाथ में है, लेकिन हर ऑनलाइन सलाह सही हो यह जरूरी तो नहीं। इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा सीखने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों या विश्वसनीय संस्थाओं से प्रशिक्षण आप जरूर लें, उनसे ही सीखें। आखिरकार प्राथमिक चिकित्सा सिर्फ कुछ तकनीकें सीखने का नाम नहीं है, यह जरूरत के समय किसी इंसान के काम की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी है। अगर समाज का हर व्यक्ति थोड़ी सी प्राथमिक चिकित्सा जानता हो और आपात स्थिति में समझदारी से अपनी प्रतिक्रिया दे, तो कई मुश्किल परिस्थितियों में मदद का पहला हाथ तुरंत आगे बढ़ सकता है।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
5: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी पुण्यतिथि। दोस्तों गुलेरी जी का नाम हिंदी साहित्य में आते ही एक ऐसे रचनाकार की याद आती है जिन्होंने बहुत कम रचनाओं के बावजूद साहित्य पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों उनका जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी लेखनी ने उन्हें हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए विशेष स्थान दे दिया। उन्हें खास तौर पर उनकी कहानी उसने कहा था इसके लिए याद किया जाता है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें त्याग, कर्तव्य, स्मृति और मानवीय संवेदनाओं की बहुत गहरी परतें दिखाई देती हैं। दोस्तों यही वजह है कि इतने वर्षों के बाद भी यह कहानी पाठकों के मन को छूती है। गुलेरी जी की खासियत यह भी थी कि वे छोटी सी घटना या साधारण से संवाद में भी जीवन की बड़ी सच्चाई खोज लेते थे। उनकी भाषा सहज थी, लेकिन भाव बहुत गहरे होते थे। उनके लेखन में बनावटीपन नहीं दिखाई देता।

यही सहजता उन्हें आज के पाठकों के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी केवल कहानीकार ही नहीं थे, बल्कि वे विद्वान, इतिहास और संस्कृति के जानकार और साथ ही साथ बहुआयामी प्रतिभा के भी धनी थे। उन्होंने साहित्य और ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि अच्छा साहित्य केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं होता, बल्कि वह इंसान के भीतर छिपी भावनाओं और सवालों को भी आवाज देता है। आज जब हम तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी छोटी छोटी बातों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में गुलेरी जी का साहित्य हमें ठहर कर इंसानी रिश्तों और हमारी संवेदनाओं को देखने की सीख देता है। दोस्तों, साहित्य सिर्फ परीक्षा में अंक पाने का विषय नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का माध्यम भी है। किसी रचनाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसके शब्द उसके समय से आगे निकलकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। गुलेरी जी ने अपनी सीमित रचनाओं के बावजूद यही कर दिखाया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना केवल एक साहित्यकार को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की उस समृद्ध परंपरा को सम्मान देना है जो हमें संवेदनशील, विचारशील और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है।

दोस्तों चलते चलते एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ, जो कि समय की कीमत क्या मायने रखती है हमें सिखाता है, विचार है समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। जिसका अर्थ है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इंसान को हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज कार्यक्रम युववाणी का सफर यहीं तक। अब अपनी रेडियो हमसफर रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी FM 102.7 पर। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

बहनों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और मैं हूं आपकी रेडियो सखी सूर्या। ये कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम स्वस्थ और अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगी। मुझे पता है कि तीज नजदीक है, तो आप सब उसकी तैयारी में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। तीज का त्योहार जैसे जैसे करीब आता है, वैसे वैसे घर में तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। और सच बोले बहनों, तो तीज का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है हरी हरी चूड़ियां, सुंदर सी मेहंदी, नई साड़ी और खूब सारी शॉपिंग। सही कहा ना मैंने? बहनों, घर से निकलने से पहले ही एक लंबी सी लिस्ट तैयार हो जाती है कि बाजार जाकर क्या क्या लेना है। त्योहार में तो बाजारों में भी काफी रौनक बढ़ जाती है। लेकिन बहनों, एक बात याद रखें कि त्योहार पर नई चीजें खरीदने की खुशी अपनी जगह है, लेकिन शॉपिंग करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। बहनों, अब व्यस्तता के बीच और समय नहीं आपका लूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य और पोषण से भरपूर कार्यक्रम, जहां हम बात करेंगे हिंदी ही हमारी पहचान है, मोटे अनाज से स्वाद भी पोषण भी, और बच्चों के लिए पौष्टिक टिफिन विषय पर। साथ ही सुनेंगे भेंटवार्ता और गीत। लेकिन उससे पहले बहनों, एक जरूरी बात, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए अपने नाम के साथ हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल एड्रेस है grahlakshmi@gmail.com। तो चलिए बहनों, आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अपनी चर्चा की ओर। बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भाषा की जो सिर्फ हमारे बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है, और वह है हमारी प्यारी हिंदी भाषा। बहनों, हिंदी सिर्फ शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने वाली भाषा नहीं है। हिंदी में हमारी मिट्टी की खुशबू है, रिश्तों की मिठास है, माँ की ममता है और दादी नानी की कहानियों की यादें हैं। बहनों, हम चाहे कितनी भी भाषाएं सीखें, यह हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी भाषाएं सीखना हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन अपनी मातृभाषा को सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। बहनों, आज के समय में बच्चे और यहाँ तक कि हम बड़े भी अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में हमें दूसरी भाषाओं के साथ साथ अपनी हिंदी भाषा को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। घर में बच्चों से हिंदी में बातचीत करें और उन्हें हिंदी बोलने के लिए प्रेरित भी करें, ताकि हिंदी बोलने में उन्हें झिझक महसूस ना हो। बहनों, भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए हमें घर से ही हिंदी के सम्मान की शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए बहनों, हम सब गर्व से कहें, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी

0: हमारी पहचान है। इसी संदेश के साथ चलिए अब सुनते हैं श्रीमती नीलम पटेल जी, जो कि एक शिक्षिका हैं, और बहन साजिदा की ये खास बातचीत को विषय है सीखने से सवरती हिंदी।
1: बहनों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी पूरे हिंदुस्तान की भाषा है और भाषा देखिए किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं, और आज हमारे साथ हैं नीलम पटेल जी, जो कि शिक्षिका हैं कंपोजिट स्कूल पनारी चौपन सोनभद्र में। तो नीलम जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद मैम।
1: तो नीलम जी, हमारा पहला सवाल यही है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है?
2: सभी सुनने वाले श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाने का पहला कारण यह है कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया था।
1: जी।
2: इस दिन को मनाने का निर्णय देश के प्रथम और तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था।
1: जी।
2: और दूसरा कारण यह भी है कि हिंदी भाषा के महान कवि और साहित्यकार राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन भी 14 सितंबर को था, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए काफी संघर्ष किया था। राजेंद्र सिंह जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे थे, इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है।
1: तो नीलम जी, ये तो आपने बता दिया कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, अब ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई?
2: भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1953 में हुई थी, लेकिन इसकी नींव 1946 में ही रख दी गई थी, क्योंकि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान देश में लोग हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कवि, लेखक और छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात आपने कहा। और ये बताइए नीलम जी कि हिंदी दिवस का महत्व क्या है?
2: हिंदी दिवस के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व को समझना और उसे बढ़ावा देना है। इसके अलावा हिंदी दिवस के जरिए भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा भी मिलता है।
1: जी जी।
2: हिंदी दिवस के माध्यम से आम बोलचाल में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है और आने वाली पीढ़ियों को हिंदी के प्रति प्रेरित किया जाता है तथा हिंदी भाषा का प्रयोग बोलचाल में अधिक से अधिक किया जाता है। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है आपने बताई कि जैसे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, ज्यादातर हम लोग घरों में अपने हिंदी ही बोलते हैं और बच्चे भी समझते हैं। और देखिए, जब भी होते हैं, बच्चे भी अगर होते हैं, तो पहला शब्द वो माँ कहते हैं, वो भी हिंदी ही है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि हिंदी का महत्व बहुत ज्यादा है। तो नीलम जी, आप शिक्षिका हैं तो स्कूल में, तो आपके स्कूल में हिंदी दिवस किस तरह से मनाया जाता है?
2: वैसे तो हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन विद्यालयों में हिंदी दिवस मनाने के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
1: बिल्कुल।
2: जैसे कि हिंदी दिवस के दिन बच्चे हिंदी भाषा में भाषण देते हैं और कुछ छात्र छात्राएं कविता, निबंध और कहानियां भी सुनाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही। और देखिए, हम लोग भी जब पढ़ते थे स्कूलों में, तो उस दिन के लिए खास तैयारियां होती थी। कोई कविता की तैयारी करता था तो कोई भाषण की तैयारी करता था। कितना उत्साह रहता था हिंदी दिवस के लिए।
2: और हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।
1: जी जी।
2: जैसे कि निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी
1: जी।
2: और कुछ बच्चों द्वारा कहानियों और नाटकों का अभिनय भी किया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: इसके अतिरिक्त बच्चों के बीच अक्षर मिलाओ, शब्द बनाओ खेल का आयोजन भी किया जाता है।
1: जी जी।
2: जिससे बच्चे भाषा को सीखते हैं, छोटे बच्चे। इसके अलावा छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान और दैनिक जीवन में हिंदी भाषा के प्रयोग की भी शिक्षा दी जाती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों में अक्षर मिलाओ और शब्द बनाओ, ये सब खेल में बच्चे देखिए बहुत उत्साह से भाग भी लेते हैं। तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से मनाया जाता है। तो नीलम जी, ये देखिए कि भारत देश के लिए, हम सब के लिए हिंदी भाषा का क्या महत्व है?
2: हम सभी को यह मालूम है कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है।

0: पूरे देश में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। हिंदी भाषा सरल और सहज होने के कारण दूसरी भाषा बोलने वाले लोग भी इसे आसानी से समझते हैं।
1: हाँ, समझ लेते हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है तो वो आसानी से उस चीज को समझ जाते हैं।
0: जैसे दक्षिण भारत के लोग हैं जिनकी भाषा है मलयालम, तेलुगु,
1: जी जी,
0: कन्नड़ और मराठी, गुजराती, राजस्थानी, ये लोग भी हिंदी भाषा को बहुत ही सरलता से समझ पाते हैं।
1: जी जी,
0: मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी भाषा का प्रयोग बोलचाल में करने वाले लोग विश्व भर में पाए जाते हैं।
1: बहुत पूरे विश्व में है।
0: जी,
1: ज्यादातर अब जैसे इंडिया के ही लोग, भारत देश के लोग जो विदेशों में गए हैं तो यहाँ की ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी, और जिनकी संख्या करोड़ों में है।
1: जी जी,
0: पूरी दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है।
1: बिल्कुल।
0: और हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होने के अलावा यह अन्य देश जैसे कि फिजी की भी राजभाषा है।
1: अच्छा।
0: हिंदी भाषा भारत के सभी पड़ोसी देशों जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, चीन है, पाकिस्तान है, इन देशों में भी बोली जाती है और हमारे देश को पूरे विश्व में सम्मान भी दिलाती है।
1: बिल्कुल, ये सही आपने बताया। और हिंदी से ही हम लोगों की हिंदी पहचान है। और देखिए, आपने जैसे हिंदी भाषा का महत्व बताया, तो ये नीलम जी ये बताइए कि महिलाओं के लिए हिंदी दिवस का क्या महत्व है?
0: देखा जाए तो महिलाओं के लिए हिंदी दिवस का विशेष महत्व है। यदि महिलाएं हिंदी भाषा के महत्व को समझें तो इसका प्रभाव हमारे समाज और राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी हो सकता है।
1: जी,
0: कहा गया है कि यदि एक पुरुष को शिक्षा दी जाए तो उससे एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, किंतु एक महिला को शिक्षा दी जाए तो उससे दो परिवार शिक्षित होते हैं।
1: बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और यदि महिलाओं में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता आ जाए और उनका दृष्टिकोण हिंदी भाषा के प्रति सकारात्मक हो जाए तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। एक बच्चे के लिए प्रथम गुरु उसकी माँ होती है।
1: हाँ,
0: और
1: ये बिल्कुल आपने
0: प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। बच्चा जो कुछ भी देखता है, सुनता है, वही सीखता है। यदि बोलचाल में माँ हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, हिंदी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करती है, तो उसके बच्चों में भी वही गुण आ जाएंगे और यही बच्चे हमारे देश के भावी नागरिक होंगे जिनमें हिंदी भाषा के प्रति गर्व और सम्मान की भावना होगी।
1: बिल्कुल सही बात है आपने भाई। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहला शब्द वो माँ ही बोलता है जो कि हिंदी है। और आपने बताया भी है कि एक माँ ही बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, तो बच्चा जैसे अपने घर में परिवार में देखता है वैसे ही सीखता है। तो नीलम जी ये बताइए कि पहले के समय में और अब के समय में कितना ज्यादा फर्क आया है? और आज देखिए ज्यादातर लोग इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश बोलने पर ही जोर देते हैं और हिंदी पर नहीं देते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पहले के समय में और अब के समय में बहुत फर्क आया है।
1: जी,
0: पहले अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कम हुआ करते थे, गिने चुने।
1: जी,
0: अधिकतर विद्यालय हिंदी माध्यम के होते थे।
1: जी,
0: आज के समय में विद्यालयों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है,
1: बहुत ज्यादा बढ़ गई।
0: हाँ, बढ़ी है, लेकिन ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी ही है। हमारे समाज में लोगों की मानसिकता हो गई है कि उनका बच्चा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ही पढ़े और बोलचाल में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करे। यदि उनके बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने और बोलने आता है तो इसमें वे गर्व महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में भेजते हैं तो भी लगता है कि नहीं भाई, हम तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों से भी पूछते हैं कि आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, और अगर उन्हें पानी मांगना हो तो बोलेंगे कि वाटर ले आओ। तो ये सब घर में छोटी छोटी बातें वो इंग्लिश में कराते हैं ताकि उनको लगता है कि इस तरह से उनका बच्चा बहुत आगे जाएगा।
0: वे यह समझते हैं कि जीवन में यदि सफल होना है तो अंग्रेजी में पढ़ाई होनी ही चाहिए।
1: जी जी,
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भाषा में हम अपने विचारों, भावनाओं और बातों को सरल और सहज ढंग से व्यक्त कर पाए, उसी भाषा का प्रयोग शिक्षा और बोलचाल में भी करना चाहिए। हमारी प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा ही होना चाहिए।
1: जी जी,
0: हिंदी के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक कविता निज भाषा की एक पंक्ति इस प्रकार है। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। अर्थात अपनी भाषा की उन्नति ही अन्य उन्नति का कारण है। इसके बिना हम अपनी किसी भी पीड़ा को दूर नहीं कर सकते। और देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मीठी भाषा मातृभाषा ही होती है।
1: जी,
0: जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी है उन्हें हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकाधिक करना चाहिए और इसके साथ ही हिंदी भाषा की उन्नति के लिए भी कार्य करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही आप बात कही कि हिंदी में ही बातचीत करना चाहिए और जैसे काम भी करना चाहिए। अब आज देखिए हिंदी हम सब के लिए, हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अपना सारा काम भी करते हैं, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि हमारी भाषा भी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो नीलम जी, आप स्टूडियो में आई, आपसे हिंदी दिवस के बारे में ढेर सारी बातें हुई और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: बहनों, इस खूबसूरत और ज्ञानवर्धक भेंटवार्ता से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए। चलिए अब कार्यक्रम में बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मोटे अनाज से स्वाद भी पोषण भी। बहनों, अब हमारी बातचीत जुड़ी है हमारी रसोई से और उस अनाज से जो कभी हमारी थाली की शान हुआ करता था। जी हाँ बहनों, मैं बात कर रही हूँ मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की। बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज हमारे लिए स्वाद और पोषण का शानदार मेल है। इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहनों, अब आप सोच रही होंगी कि मोटे अनाज से आखिर बनाए क्या, तो विकल्पों की कोई कमी नहीं। बाजरे की गर्मा गर्म रोटी, रागी का चीला, ज्वार की रोटी, मिलेट्स की खिचड़ी या फिर टेस्टी टेस्टी उपमा, यानी स्वाद भी अपनी जगह और सेहत भी अपनी जगह। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें अपनी रोज़मर्रा की थाली में धीरे धीरे शामिल किया जा सकता है। बहनों, इनको आहार में शामिल करना सिर्फ सेहत की बात ही नहीं है, इनका स्वाद भी कमाल का होता है। बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि स्वस्थ भोजन मतलब स्वाद से समझौता करना, लेकिन मोटे अनाज हमें यही बताते हैं कि स्वाद और सेहत साथ साथ चल सकते हैं। ज़रूरत बस इतनी है कि हम अपनी थाली में वैरायटी लाएं। केवल एक ही तरह के अनाज पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग अनाज को अपनी डाइट में जगह दें। तो बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपके घर में बाजरे की रोटी किसे सबसे ज़्यादा पसंद है? भाई, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी हो और उसके साथ दही या सब्जी, भाई मुझे तो सोचते ही भूख लगने लगी। और क्या आपने कभी रागी का चीला या ज्वार का उपमा बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो इस सप्ताह एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। हो सकता है कि आपकी रसोई में कोई नया पसंदीदा व्यंजन शामिल हो जाए। बहनों, मोटे अनाज हमारी खान पान की पुरानी विरासत है। इन्हें अपनी थाली में शामिल करके हम स्वाद के साथ पोषण भी ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं तो बाजरा, ज्वार या रागी को अपनी खरीदारी की सूची में ज़रूर ऐड करें। इसी के साथ बहनों, अब टाइम है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत और आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। तो अब हम बात करते हैं बच्चों के पौष्टिक टिफिन पर। बहनों, सुबह का समय हर घर में कितना व्यस्त होता है, जिनके घर बच्चे हो उनका तो और। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, नाश्ता बनाना, घर के काम निपटाना और इसी भागदौड़ के बीच तैयार करना होता है बच्चों का टिफिन। लेकिन आज जरा रुक कर सोचिए बहनों, हम बच्चों के टिफिन में जो खाना रख रहे हैं, क्या वह सिर्फ स्वादिष्ट है या पौष्टिक भी है? बहनों, बच्चों के विकास के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। उनका शरीर बढ़ रहा है, दिमाग लगातार सीख रहा है और दिन भर पढ़ाई और खेलकूद के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए टिफिन में ऐसी चीजें होना चाहिए जो उन्हें स्वाद के साथ साथ जरूरी पोषक तत्व भी दें।

बहनों, आप बच्चों को वेजिटेबल पराठा या सैंडविच दे सकती हैं, या बेसन का चीला, पोहा, उपमा, इडली जैसी कई चीजें दे सकती हैं। साथ में मौसमी फल जरूर दें, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, कुछ भी टिफिन में रख सकती हैं। बहनों, अगर बच्चा सब्जी खाने में आनाकानी करता है तो उन्हें टिफिन थोड़ा आकर्षक बनाकर ही दें, क्योंकि बच्चे रंगीन और अलग अलग आकार का खाना देखकर अक्सर ज्यादा उत्साहित होते हैं। बहनों, एक और जरूरी बात, बच्चों को रोज टिफिन बदल बदल कर दें, ताकि वे एक जैसा खाकर बोर ना होए। इसके अलावा बच्चों को पर्याप्त पानी पीने की आदत भी डालें, और बाहर का जंक फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और तला भुना खाना रोज टिफिन का हिस्सा ना बनाए। तो बहनों, अगली बार जब आप बच्चे का टिफिन पैक करें तो सिर्फ यह ना सोचे कि पता नहीं बच्चा इसे खाएगा या नहीं, बल्कि यह सोचे कि इससे मेरे बच्चे को कितना पोषण मिलेगा। बच्चों को हेल्दी और उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करने के लिए उनके टिफिन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ उसे पौष्टिक और संतुलित भी बनाइए।

तो बहनों, आज के कार्यक्रम में हमने काफी चीजों को जाना और समझा। अब इस खूबसूरत बातचीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर भी बढ़ रहे हैं। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी कि स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और उसकी सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए बहनों, हमें करना होगा छोटी छोटी कोशिशें, और कोशिश में सबसे पहले होगा पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए आइए हम खुद भी पेड़ लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एक पेड़ लगाने से हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और हरा भरा वातावरण दे पाएंगे। तो बहनों, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं और धरती को सुंदर बनाएं। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी सूर्या को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी FM 102.7 पर। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित पांचवां गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ कैले। ये मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री नौजवानन से कहले कि वो अपन जरूरत के हिसाब से किताब खरीद ले और पढ़ने का आदत विकसित करें। मुख्यमंत्री नौजवानन से अपन बुक बैंक बनावे का अपील करत कहले कि खाली समय में किताब पढ़े का आदत जिंदगी के नया दिशा दे सकेला। लखनऊ के साहित्य का पुराण केंद्र बतावत श्री योगी प्रदेश के वो जगहिन का चर्चा कर लें जहाँ वहाँ की कालजयी रचना पूरा दुनिया का ध्यान के चले हवे।
1: अनेक ऐसे साहित्यकार लखनऊ ने और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र ने दिए हैं जिन्होंने देश को अपनी कालजयी रचना के माध्यम से आकर्षित किया है। इसी लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूर में नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में भारतीय ज्ञान की इस परंपरा ने चिंतन को आगे बढ़ाने का काम किया था। काशी के विश्वविद्यालय जग विख्यात रहे हैं। प्रयागराज की धरती, वहाँ के कुंभ की परंपरा ये केवल एक आयोजन महोत्सव नहीं है, भारत की ज्ञान परंपरा की चिंतन की वह स्थली रही है जहां पर देश भर से ऋषि मुनि जुड़ते थे। इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ में श्रीमद भागवत महापुराण की पहली कथा का वाचन भी होता है।
0: मुख्यमंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में लागल पुस्तक प्रदर्शनी के देखले और वही जब मौजूद लेखन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किताब एग्जाम वॉरियर से बटले। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कई गई। ये दौरान सुलह समझौता के जरिया से कई गो मामला का समाधान सुनिश्चित कई गई। ये में यातायात चालान, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, मोटर दुर्घटना, ऋण वसूली जैसे मामला शामिल रहे। गाजीपुर में आयोजित लोक अदालत में ढेर संख्या में लोग शामिल भइले। वहां के लोक अदालत का नोडल अधिकारी शक्ति सिंह बतौले कि ज्यादातर लोग इनके मामलन के निस्तारित कई गई। कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिया से 2,60,000 मामलन का निस्तारण कई गई। अयोध्या में आयोजित लोक अदालत में श्रमवादन का खास तौर पर निस्तारण कई गई। ये दौरान पीड़ित पक्ष के लोग इनके 38,79,000 रुपया के धनराशि का भुगतान करावल गई। गोरखपुर, अमरोहा और फरुखाबादों में लोक अदालत के जरिया से ढेर संख्या में बाद निस्तारित कई गई। भारत ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80,00,000 टीका का खास आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हिसाब से गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम के अलावा उत्तर प्रदेशों अपन निर्धारित लक्ष्य का 100% कवरेज पा लिया लावे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बतौले कि सबसे ज्यादा 22,00,000 लेकिन के टीका लगावल जा चुकल हो। ये अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2026 में कैले रहले। अभियान में 14 वर्ष के उम्र वाला लैकिनन के माता पिता के मंजूरी से सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में स्वैच्छिक और निःशुल्क एकल खुराक HPV टीकाकरण दिया जाला। ई टीका HPV संक्रमण और HPV से जुड़ल कैंसर से सुरक्षा दियाले के दिशा में एगो बढ़हन कदम बा। प्रदेश के करीब सज्जो पूर्वी जिला में छिटपुट बादल छव रहे और कुछ जगहों पर रुक रुक कर गरज चमक के साथ ही बरखा का सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग के मुताबिक बरखा का वायुमंडलीय परिस्थिति बनल बा जेकरे नाते अगला 4 दिन ले गोरखपुर और एकरे लगे के जिलन में कुछ जगहों पर हल्लुक आ कुछ जगहों पर मध्यम बरखा भइले का पूर्वानुमान बा। ओहर लगतारे बरखा भइले आ बैराजन से पानी छोड़ैले के नाते राज्य के 2 दर्जन से बेसी जिला अभिनो बाढ़ के चपेटा में हवे। बाढ़ प्रभावित जिलन में जिला प्रशासन की ओर से लगतारे निगरानी कैल जा रहा हो आ राहत और बचाव कार्य जारी बा।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालय में लैकन से जुड़ल सूचना का निगरानी प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था के

0: प्रभावी संचालन बदे 6,55,00,000 रूपया जारी कैले हवे। ये धनराशि से यू डायस प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन सुनिश्चित कैल जाए। समाचार पूरा भई, नमस्कार।
1: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। आइए हम जान लेते हैं अपने शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सबरस का समय होगा शाम 7:31 पर और शाम 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

समाचार का समय होगा रात्रि 8:45 पर। हिंदी में और रात्रि 9 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। हमारे ये दोनों ही समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से। ये थे हमारे शेष कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नखड़ो भैया तो हूँ कि राम राम हो, कह सुनाओ का हाल चाल।
0: भैया हो देखा हाल चाल पूछा था आजकल का जो दिन भैया हम तो कब के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्या आवत है, खास तौर पर इस समय जबकि भैया बरखा बुन्नी का दिन बा और जल जमाव से देखा कर किरौना मच्छर का प्रकोप हो जात बा, पेयजल में अशुद्धता आ जात बा और देखा एकरे वजह से तमाम स्वास्थ्य को जो समस्या बा वो आवत बा। और कभी कभी तो भैया दूर दराज में रहे वाला लोगन के साथे रात बिरात ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जात बा कि भैया मतलब उनके समझ में नहीं आवत कि का करल जाए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो हम तो कहा भैया कि अगर ऐसा आपात स्थिति उत्पन्न होत बा तो अपने स्वास्थ्य पर एक थोड़ा सा चर्चा भी कर दिया जाए तो बड़ी अच्छा हुई।
1: क्या
0: आज के दिन भी देखा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनावल जात बा ताकि लोगन जो आपात स्थिति में अस्पताल तक पहुंचे में कैसे उनकर मदद हो।
1: बिल्कुल
0: इस पर भैया कुछ जानकारी हो पावे।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो भैया। देखें जौन आपात स्थिति बा, आपात स्थिति में कभी कभी का होला कि अगर कौनो पंच भैया लोग दुर्घटना ग्रस्त हो गिन भैया रोड रोड पर हो तो अपन पंच भैया लोग डरना डर के कारण कि उनके हॉस्पिटल या अस्पताल नहीं पहुंचा पौते या कहीं सूचना प्रेषित नहीं कर पौते कि अगर हम सूचना देव या हॉस्पिटल पहुंचाई अगर इनके कुछ हो गल तो उनमें हमहू फंस जा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसने स्थिति में देखें हम अपने पंच भैया लोगन से यह कहब कि भैया हो सबसे बड़ा काम ई बा के घायल के जौन भी व्यक्ति घायल अवस्था में बा ओके सही जगह सुरक्षित जगह पहुंचावे का प्रयास करे के चाहिए। आ कभी भी अपने मन में ई डर भय न ले लियावे के चाहिए कि अगर हम केहू को सहयोग कर दे तो उसे हम फंस सकीला।
0: बिल्कुल सही कहते हैं भैया। देखा कभी कभी दुर्घटना भैले पर समझ में नहीं आवा कि लोगन के करे के क्या चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और लोग घबराए जाना तो सबसे पहले तो कब के भैया घबरा एकदम बिल्कुल घबराए ना चाहिए और सबसे पहले अपन सुरक्षा का ध्यान रखा है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर दुर्घटना स्थल पर यातायात या बिजली का खतरा हो भैया ऐसने जगह पर भैया सावधानी बरतें और अपने को सुरक्षित पहले रखें, उसके बाद घायल व्यक्ति का स्थिति देखें और आपातकाल चिकित्सा बदे भैया 112 नंबर पर भैया कॉल करें ताकि उनके तुरंत मदद पहुंच सके भैया।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो नखड़ू भैया। तो अपन पंच भैया लोग भी 112 नंबर जरूर ध्यान रखे हैं, सही सूचना अगर सही समय पर दी है तो केहू का जान भैया बच सकला, केहू का प्राण बच सकला है। और सबसे बड़ा भैया पुण्य का काम जौन बा यह बा कि केहू के जीवन बचावे में अगर हम लोगन काम आ सकें तो ये सबसे बड़ा योगदान कहल जाए।
0: बिल्कुल। और देखा अक्सर देखा जाला कि कभी दुर्घटना हो गल हाथ पैर में चोट लग गल भैया और खून बहे लगल तो ऐसे में मतलब होला के कोई माटी ऊपर डाल दे वाला कोई और समझ में ना आए जौन चीज तक खून रुका है। देखा विशेषज्ञ लोग बात बतावा ना कि ये तरह का चीज माटी या कोनो गंदा चीज लगोले से और स्थिति खराब हो सकला। कोशिश करें कि साफ कपड़ा अगर बा तो साफ कपड़ा से उके बांध देवे, अगर फिर भी नहीं वो कपड़ा से
1: रक्त स्राव रुकत
0: रुकता तो ऊपर फिर साफ कपड़ा बांधे और ज्यादा रक्त स्राव अगर होत बा तो तुरंत भैया चिकित्सकीय मदद बदे उनके ले जाए चाहिए ताकि उनका रक्त रुक सके और स्वस्थ रह सके।
1: बिल्कुल भैया। हम तो कहो कि प्रत्येक पंच भैया लोगों की जो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान बा वो होवे के चाहिए। कहे से कि अगर प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान अपने पंच भैया लोगों के रही तो सही समय पर वो सही सहायता दे कर केहू का जान बचा सकन। भैया हो बात बात कही आगे हम लोगों ने वही करब लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हुई काका ई भी अपने पंच भैया लोगन के बतावल

0: कार्यक्रम का और देखा शुरुआत में ही आपातकाल में जीवन का आधार प्राथमिक उपचार एक विषय भी बा और बहुत सही समय पर भैया ये जानकारी हमन के बीच में आयल बा।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर सुमन जायसवाल जो है उनसे चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र अच्छा भैया तो उनसे सुरसरी द्विवेदी बात करते हैं तो हम तो आपको बिना देर के लिए सुन जाए।
1: बिल्कुल सुन जाए।
2: साथियों क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व में तकरीबन 13 से 14 लाख मौतें सड़क दुर्घटना में समय से उपचार न मिल पाने की वजह से होता है। प्रायः दुर्घटनाएं गंभीर भी होती हैं जो स्थान पर ही घायल मौत का शिकार हो जाता है, किंतु कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो घायल व्यक्ति मौत इसलिए पाता है क्योंकि अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, अर्थात उसे समय से उपचार नहीं मिल पाता, जिसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार का महत्व अब आपको समझना होगा कि हम जहां हैं, जिस हालात में हैं, किसी भी घायल को तत्काल अपने अपने दुपहिये पर बैठाकर किसी भी निकटवर्ती अस्पताल तक अवश्य पहुंचाएं। कतई किसी भी प्रकार की जवाबदेही आपकी इस संदर्भ में नहीं बनती है कि दुर्घटना क्यों हुई, बल्कि आपको इस बात के लिए न केवल मौखिक सराहना मिलती है बल्कि कुछ अवसरों पर पुरस्कृत भी किया जाता है। हमें आपको सबको प्राथमिक उपचार के महत्व को समझना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं मुख्य चिकित्सा कार्यालय से उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरकारी सचिव रेड क्रॉस डॉक्टर सुमन कुमार जायसवाल से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में।
3: जी हाँ श्रोताओं, आइए जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा की उत्पत्ति और आवश्यकता को। प्राथमिक चिकित्सा सिखाने के लिए 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस का गठन किया गया था। प्राथमिक ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ। यह दो शब्दों को मिलाकर बना, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्लस नेशनल एड से मिलकर फर्स्ट एड कहलाया। ब्रिटेन में नागरिक एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से रेलवे, खदान और पुलिस को फर्स्ट एड से प्रशिक्षित किया गया।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि यह वह संभावित स्थान है जहां आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
3: जी हाँ, इसी क्रम में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट ने की। फर्स्ट एड दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। फर्स्ट एड के संस्थापक सर फ्रेडरिच एस मार्च थे, जो कि एक जर्मन सर्जन थे। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्वरित प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया का अर्थ उन लोगों के लिए जीवन या मृत्यु हो सकता है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यह दर्द को कम करने, चोटों को कम करने और अस्थायी क्षति को रोकने में मदद करता है।
2: जी।
3: प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाने का उद्देश्य ही यही है कि इस दिवस से हम नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ाएं, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण को महत्व को बढ़ाएं एवं बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कौशल को सीखने के लिए प्रशिक्षित करें।
2: जी, और हमने जहां तक जाना है कि प्रत्येक वर्ष यह दिवस किसी विशेष थीम
3: जी हाँ
2: से मनाया जाता है।
3: जी हाँ मैम, इस वर्ष 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड रखा गया है। यानी आज के दिवस का उद्देश्य है कि हम डिजिटल आविष्कारों के द्वारा, इंटरनेट संचार माध्यम के द्वारा फर्स्ट एड देने की जानकारी प्रत्येक सामान्य नागरिक को देना चाहते हैं। यही आज के दिवस का उद्देश्य है।
2: जी बिल्कुल, और घर बैठे हम प्राथमिक चिकित्सा को समझें, और बिल्कुल समझना आसान भी है क्योंकि यदि आपने कहा कि डिजिटल माध्यम से करें
3: हाँ।
2: तो आज प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता है उसके पास, उसके हाथ में यह एक

0: स्मार्टफोन जरूर होता
1: यहाँ
0: है।
1: एंड्रॉयड फोन है, उस पर यूट्यूब है, गूगल है,
0: जी
1: जिसके माध्यम से वह आसानी से फर्स्ट एड को सीख सकता है। फर्स्ट एड 5 सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले विक्टिम की जीवन की रक्षा करना। अगर वो ऐसी आकस्मिक स्थिति में फंसा हुआ है तो सबसे पहले हम उस विक्टिम को उस आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति से निकालेंगे। दूसरा, रोगी के घाव चोटों को अधिक क्षति पहुंचने से रोकना, उसके दर्द को कम करना, अस्थायी क्षति न पहुंचे इससे उसे बचाना और विक्टिम को बेहोश होने से रोकना। इसको हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला ABC, यदि कोई विक्टिम ऐसी जीवन मरण की अवस्था में है तो सर्वप्रथम हम ए से एयरवे को मेंटेन करेंगे और सांस में अगर उसके मुंह में या फिर सांस की नली में कोई रुकावट उत्पन्न हो रहा हो, कोई पानी या फिर खून का थक्का अगर जम रहा हो तो उसे हटाएंगे
0: जी
1: ताकि वो सांस लेता रहे।
0: जी
1: बी से ब्रीदिंग होता है, सांस
0: जी
1: लेते रहें।
0: स्वतंत्र
1: विक्टिम को ऐसी अवस्था में रखेंगे ताकि वह सांस लेता रहे। प्रायः यह देखा जाता है कि विक्टिम कोई टाइट कपड़ा पहना हो तो उसे हम खोल देंगे या कैची से काट देंगे ताकि
0: जी
1: उसे गला जो है उसका बंधे ना और
0: तंग कपड़े
1: आसानी
0: हटा
1: से।
0: दिया जाए।
1: हाँ, और ऐसे जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है ताकि देखा जाता है कि भीड़ जुट जाते हैं लेकिन अनट्रेंड लोग उसे उठाकर या ठीक तरीके से नहीं ले जाते हैं जिससे उसका गला अवरुद्ध होता है। अगर फर्स्ट एड की जानकारी हो तो विक्टिम को किस तरीके से
0: उठाना
1: रखना
0: है
1: है, उसके
0: जी,
1: गले को किस तरीके से एक्सटेंड
0: संभालना
1: करके
0: है बिल्कुल
1: रखना है ताकि वो आसानी से सांस लेता रहे।
0: जी
1: सी फॉर CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। यदि विक्टिम सांस नहीं ले पा रहा है तो हम CPR करेंगे जिसमें चेस्ट कंप्रेशन करते हुए मैकेनिकल वेंटिलेशन या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देकर विक्टिम की जान को बचाया जा सकता है। रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं
0: बिल्कुल
1: जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। ऐसी अवस्था में फर्स्ट एड में ट्रेंड व्यक्ति इस ब्लीडिंग को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: घर में या बाहर फैक्ट्री में आग जलने की अक्सर जो है सूचनाएं आती रहती हैं। बर्न के समय मुझे किस तरीके से ठंडे पानी से उसे जलन को कम करना है, उसे फर्स्ट एड देना है, ये फर्स्ट एड ट्रेंड से हो सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: सांस की नली में अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे खेल खेल में कुछ निगल लेते हैं जो सांस की नली में फंस जाता है। इसे किस तरीके से प्राथमिक उपचार पर रखना है घर में और हॉस्पिटल पहुंचने तक हमें उसे प्राथमिक उपचार देना रहता है, फर्स्ट एड से सीखा जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: अगर हड्डियां टूट गई हैं तो उसे किस तरीके से हम किसी चीज से बांध कर सीधा रख सकते हैं ताकि विक्टिम को और अधिक
0: पीड़ा ना
1: दर्द
0: हो,
1: या फिर और अधिक हड्डियां टूटने से बचाया जा
0: बचाया जा
1: सके।
0: सके बिल्कुल
1: इन सभी अवस्थाओं में विक्टिम को फर्स्ट एड देना सभी नागरिक को जानना और सीखना आवश्यक है।
0: डॉक्टर साहब। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यह सब चीजें सीखना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: अगर हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार की बात कर ही रहे हैं और हर घर में जलने के लिए हमारे पास स्टोव है,
1: जी हाँ,
0: सीढ़ी है गिरने के लिए, या कहें भी
1: जाड़ों में आग तापते
0: हाथ सेक
1: हैं।
0: रहे हैं उसमें जल जाते हैं, आजकल घरों में टाइल्स का जो प्रचलन है उसमें पैर फिसल जाता है, तो हमारे श्रोताओं को वह आवश्यक सामग्री जिससे हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकें उस पर थोड़ा बताइए।
1: सर्वप्रथम हमारे श्रोता ये जान लें कि फर्स्ट एड कौन दे सकता है।
0: जी
1: तो वो सभी नॉन एक्सपर्ट व्यक्ति जो कि फर्स्ट एड में ट्रेन है वो आसानी से फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड के लिए क्या जरूरी सामान है हमारे श्रोताओं को जानना लेना आवश्यक है कि यह बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फर्स्ट एड एक मैनुअल रख सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार
0: सामग्रियां
1: की
0: हैं
1: दुर्घटनाओं से, कटे से, जले से या फिर स्प्रेन वगैरह लग जाने से, मोच वगैरह लग जाने से किस तरीके से हम उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, इसका एक मैनुअल रख सकते हैं। दूसरा, अलग अलग साइज के स्टराइल गॉज पैड्स रखते हैं। यह पकाया हुआ एक प्रकार का गॉज होता है जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है। इसे सीमित मात्रा में हम अपने घरों पर रख सकते हैं, यानी कभी कोई कट लग जाने से या फिर एक्सीडेंट में कटे फिटे अंग हो जाने से हम गंदे कपड़ों या फिर उससे सफाई न करके स्टराइल गौस से ही सफाई करें
0: जी।
1: एडहेसिव टेप जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है इसे भी रखें ताकि चिपकाने में घाव को आसानी हो।
0: एक सच्चे समर्पित मददगार की तरह किसी व्यक्ति की जान बचाने में अपनी भूमिका अदा करें, क्योंकि हमारा यह दिवस अगर देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है तो हमारी सहभागिता ही इस दिवस की सार्थकता को सिद्ध करेगी।
1: जी हाँ
0: डॉक्टर साहब, इस दिवस पर आपने अपनी बातें बताई, हमारे श्रोता इस पर अमल करेंगे और दुर्घटनाओं से बचेंगे। दुर्घटना में जैसा आपने बताया अस्थाई क्षति यानी मृत्यु जैसी स्थिति को रोकेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: मुने भैया देखा, दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकला, घरे में, खेते में, सड़क पर, कार्यस्थल पर। ऐसने समय में हमें समझदारी और सावधानी के साथ भैया कदम बढ़ावे के चाहिए और समय पर चिकित्सकीय सहायता व्यक्ति के स्थिति के सुधारे बदे कोशिश करे के चाहिए। समय पे उनकी चिकित्सकीय सहायता मिल सके। पर देखा डॉक्टर सुमन कुमार जायसवाल भैया बड़ी बढ़िया जानकारी बताना, चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र रहना और उनसे सुश्री द्विवेदी
4: बातचीत रहा भैया, बड़ा फरियाए रहा
3: बिल्कुल। तो इतना बढ़िया भैया जानकारी हम लोग सुन ली जाए और देखा भैया समय समय पर हम लोगों के हमेशा सतर्क रहे चाहिए, चूंकि बरसात का दिन बा, देखल जाला कि गांवन में इस समय सांप कहीं भी निकल जाते हैं और उसे अफरा तफरी का माहौल बा, कुछ लोग एकर शिकार भी हो जाते हैं।
4: बिल्कुल।
3: तो अगर ऐसे लोग जोन इस तरह के शिकार हो जाते हैं उनसे हम यह कहब जोन उनके सहायता करते हैं उन लोगों से कि उनके मतलब ऐसे कि चारों तरफ से घेर लें, उनके घबरवाही ना बल्कि उनके शांति से एक जगह बैठाएं, चले फिरे में कोशिश करें कि ज्यादा चले फिरे ना। और जोन झाड़ फूक वाला भैया चलल बा कि झाड़ फूक ले जाने से सही हो जाला तो ओकरे चक्कर में ना पड़ जाए, उसे समय बर्बाद हो।
4: बिल्कुल।
3: तुरंत अस्पताल ले जाए, जोन नजदीकी चिकित्सालय बा वहाँ ले जाए ताकि उनका भैया सही से इलाज हो सके और बच सके।
4: बिल्कुल सही इलाज यह बा भैया के झाड़ फूक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में पड़बा मत कर मत करा। देखा भैया नखड़ू
3: भैया देखा पानी का असर आपके ऊपर,
4: अरे एकदम भैया हो गया हो तो कहले का मतलब हमरे ये रह रहा कि झाड़ फूक के चक्कर में एकदम मत पड़ा, सही समय पर सही इलाज बदे उनके अस्पताल पहुंचाओ। कौनो भी अगर कीड़ा गौछी कटले बा भैया तो ओकर सही उपचार वही हॉस्पिटल में होई, डॉक्टर के पास भी ही होई, तब भैया ये सब माने लापरवाही एकदम मत बरता। देखा अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जा, जगदीश यादव और उनकर संघाती लोगन भैया एक मन मनसायन करावल चाहत हूँ, मन मनसायन सुनले के बाद तब फिर हम लोगन जानकारी सुनब।
3: सुनल जाए भैया।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

0: अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: मुने भैया।
2: हाँ नखड़ो भैया।
1: भैया देखो जगदीश यादव और साथी लोगन का ये भैया किसाने गीत रहा था कि सीमा पे जवान और खेते पे किसान अपने कर्तव्य पथ पर डटल बाय
2: भैया। दोनों अपने माई का असली बेटवा यही बाय हो, खेते में किसान और सीमा पर जवान। एक भैया अन्न उपजावता अपने खेत में परिश्रम कहकर और दूसरा भैया अपने देश का रक्षा बदे हो सीमा पर मुस्तैद बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैंने पहले का बूढ़ बुजुर्ग भी गाँव न कि पनिया बरसे या पत्थरवा पहरू पहरा पे खड़ा, तब भैया हो पहरू जौन बा वो पहरा पर खड़ा होकर देश का सुरक्षा करता। वही कारण से हम लोगन आज सुरक्षित भाई। हम तो कह के अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जा बिना देर कैले।
1: बिल्कुल। और देखा भैया हर किसान का सपना रहला कि अच्छा पैदावार मिले, लेकिन बदलत मौसम और अनियमित वर्षा, पानी की कमी और माटी का घटत उर्वरता और खेती में बढ़त लागत भैया किसानन बदे एक बड़ी चुनौती बन के भैया सामने आयल बा। और एकर समाधान कैसे करल जाए इपर देखा अपन हमन के सोचे के बा। और जो एक सतत विकास का अवधारणा बा भैया, इपर किसान भाई लोगन भैया अपन प्रयास करत हैं। और देखा जब चूंकि खेती किसानी के बात होत बा भैया, तो एक जानकारी बा हमन के बीच में, कुनरू का व्यवसायिक खेती कमला प्रसाद प्रगतशील कृषक हैं और उनसे बात बत कही अख्तर अली भैया अकेले हैं,
2: तो हम बिना देर के लिए सुन लो।
3: किसान भाई देखें, हम लोग हमेशा ई प्रयास कैल जाला कि खेती ऐसन कैल जाए जैसे कि 4 पैसा के आमदनी हो सके, यानी कहे कि मतलब कि व्यवसायिक रूप दिहल जाए। और हर मौसम में कुछ न कुछ नया करे के प्रयास कैल जाला। और कुछ तो ऐसन तरकारी बा जोन की बाजार के अच्छे ढंग से प्रभावित करेला, जब बाजार में कोई भी सब्जी नहीं रहला तब भी जोन बा कि वो आपन प्रभाव दिखावेला, ऐसे ही एक सब्जी बा कुनरू। कुनरू के खेती हमेशा से अपने किसान भाई करत आवत हुआ, लेकिन अगर एक बढ़िया ढंग से कैल जाए, कैसे तैयारी कैल जाए, कैसे पौध के व्यवस्था कैल जाए, सामयिक कार्य कौन कौन कैल जाए, अगर इस सब बात पर विशेष ध्यान धर के कुनरू के खेती कैल जाए तो इसे अच्छा लाभ लिहल जा सकेला। और यही सब विषय पर आज बातचीत हम लोग कैल जाए। और बातचीत करे के खातिर आज अपने साथ स्टूडियो में आमंत्रित हुआ कर्मा ब्लॉक के खुटहनिया गांव से कमला प्रसाद जी। आप एक प्रगतिशील किसान हुआ और कुछ न कुछ नया करे के हमेशा जोन बाकी प्रयास करेला और खासकर बाजार के देखते हुए। तो कमला प्रसाद जी, सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। हम और अपने किसान भाई सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आपके यहाँ इस समय कौन कौन तरकारी निकल रहा बा।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे यहाँ इस समय तो वैसे भिंडी निकला था और कुंदरू का भी फसल लगल हो।
3: अच्छा,
4: कुंदरू
3: अच्छा,
4: भी निकलत हो।
3: तो
4: भिंडी जोन है एमन एक समस्या होले कि एक तोड़े खातिर के लेबर जल्दी ना मिलल,
3: कांटा लायल,
4: तो इमें समस्या होले तो खाली वह आदमी कह सकेला जे अपने हाथे ओके कह सके या तो फिर ओकर लेबर प्रशिक्षित लेबर हो और ओके तोड़ सके।
3: जी बिल्कुल।
4: तोड़े में ध्यान रखे वाली बात होले कि मतलब एक साइज मेंटेन करे के होला, वही साइज का भिंडी अगर तोड़ी है तब भी मार्केट में रेट मिले।
3: सही बात। या तो बड़ा हो जाए तब गड़बड़ा आ जाए,
4: बड़ हो जाए तब वो, छोट हो जाए तब वो, कुल समस्या रहे।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भिंडी से अच्छा लाभ मिले आपके?
4: हाँ ठीक ठाक लाभ है, लेकिन अब समस्या ये है कि अगर वो छूट गई तो खराब हो गई, कोनो काम का नहीं खान। और रेट भी 20 से लेके 30 के बीच में है ये साल।
3: अच्छा।
4: और अच्छा, पिछले साल से तो काफी अच्छा है।
3: अच्छा, अभी कुनरू के आप नाम ले रहा हाँ, और बाजार में हमेशा जोन बाकी दिखाई दे ला, तो का कुनरू के खेती के कोई खास समय होला या एक कभी भी लगावल जा सके?
4: एक कभी भी लगावल जा सकला।
3: अच्छा।
4: एक जाड़ा में भी लगावल जा सकला, एक मार्च अप्रैल मई जून मतलब ये समय भी लगावल जा सका।
3: अच्छा।
4: अगर लगावल चाहे किसान भाई तो ये समय भी लगा सका ना। जे ये समय लगा दही
3: जी
4: तो एक आध महीना ये समय फुटरिंग मिली फल ओकर मिली एक आध महीना, लेकिन बाद में फिर ठंडी के बाद फिर जब फरवरी मार्च में, मार्च से फिर एक कायदे से उत्पादन चालू

0: हो जाला तो वो फिर चलते रहे अक्टूबर तक।
1: अच्छा, यानी जो अभी पौध लगी
0: जी,
1: तो थोड़ा 1-2 महीना
0: 2 महीना 3 महीना आपके वेट करेगी,
1: वेट
0: वही
1: करके बड़े इंतजार करिए,
0: निकली लेकिन वो
1: थोड़ा
0: सिर्फ
1: कम निकली,
0: बहुत कम निकली।
1: और फिर जैसे ही अनुकूल मौसम मिली तो फिर अपन रंग पर आ जाए बढ़िया।
0: जी जी
1: कुंदरू के खातिर अगर कोई भी किसान भाई अगर योजना बनाओ चाहकर, पौध के बारे में का कहे चाहिए, जैसे पौध भेल या लता भेल, अगर कोई भी किसान भाई अगर नया शुरू करे चाहत हूँ तो उनके कैसे पौध के व्यवस्था करे के पड़ी।
0: अगर आप नया कहल चाहत हूँ कोनो भी किसान भैया तो वो हमसे संपर्क कर सकल और हम उनके उपलब्ध करवा दे पौधे कर,
1: जी
0: और एक पौध ले जाए कि एक बार आप लगा लें ओकरे बाद ओके आप अपने यहाँ जितना लता रही वही से ओके बढ़ा लिए, हम उनके तरीका बता दे। और हम विशेष रूप से हमारे मन कमाई का कोनो ऊ ना है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि वो फैले आप लोगों
1: अच्छा
0: तक पहुंचे
1: जी
0: और
1: जी
0: आप लोगों के बढ़ाए के ओकर लाभ ले सका।
1: का बात है, अच्छी बात है कि किसान भाई अगर चाहें तो आपके यहाँ से पौध ले सकेलन, और एक बार वो शुरुआत कर दी है तो फिर जो लता रही वो के बार बार वो इस्तेमाल
0: जी
1: करें।
0: जी जी बिल्कुल लता के इस्तेमाल कर सका ना।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: सबसे बड़ी खासियत यह हो कि एकर जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना में तो बहुत जबरदस्त उत्पादन होला। एकर उत्पादन हो 30 क्विंटल प्रति एकड़ ये 3 महीना में।
1: यानी इस समय ज्यादा फसल देवे वाला है
0: हाँ
1: ई। अच्छा, ये समय अगर जेकर फसल निकलत हुई वो कब लगोले हुई।
0: वो कुछ लोग तो ऐसे समझ लें कि जून में लगौलें और आज प्रोडक्शन में है।
1: अच्छा, जून में लगल और अभी बढ़िया उत्पादन मिल
0: हाँ
1: जाएगा।
0: जे पौधा लगौलस जून में, जैसे पौध ले जाए के लगौलस तो पौधा तो ऑलरेडी तैयार है, जैसे ही लगौलें तो चले लगल तो 40 दिन में लोगों का उत्पादन आयल। जो हम फील्ड में रिजल्ट देखली
1: जी
0: तो 40 दिन में उत्पादन शुरू हो गल। वो अलग बात है कि जितना आपको लता ओकर वृद्धि विकास हुई वनस्पति वही के हिसाब से आपके उत्पादन मिली।
1: अच्छा, जैसे कमला प्रसाद जी, एक बार जैसे मान लें कि पौध लग गए
0: हाँ
1: आपके यहाँ से या कहीं से भी ले करके,
0: जी
1: तो वो हमेशा से लगले रहला या कभी ओके समाप्त करे पड़ला, कटाई
0: वो
1: छटाई करे पड़ला।
0: लगभग हर साल कटाई छटाई एकर होला जनवरी में
1: अच्छा ठीक है,
0: और फरवरी में ओकर ग्रोथ शुरू हो जाए और मार्च से फ्रूटिंग चालू हो जाए।
1: अच्छा, यानी हर साल ओके जो भी बढ़वा रही हो के कटाई छटाई कर
0: हाँ
1: देंगे।
0: कटाई छटाई कर जाए अच्छे से और खेत में जो है गोबर का खूब सड़ल खाद वगैरह ये सब कायदे से जो है दहला के मिला के ओके देवे के ये सारा प्रबंधन आपके करे की पड़ी। वैसे कीट पतंगा ये फसल में बहुत कम लगल ना, सिर्फ फल मक्खी वगैरह या व्हाइट फ्लाई की वजह से थोड़ा सा वायरस का शिकायत आवेले। कभी कभी बहुत मौसम खराब रहल तो फंगस वगैरह का भी शिकायत मिले ले तो मन कापोरॉक्सीक्लोराइड
1: जी
0: ये 2 ग्राम मात्रा लेके प्रति लीटर पानी में घोल बना के एक रोग से मुक्ति मिल जाए और आपको कुंदरू फसल बढ़िया चलने लगी। मुक्ति मिल जाए तो वो करीब 3 टन ही काफी हो जाए मुर्गी खाद
1: जी
0: और वो खेत में डाल के खूब अच्छी तरह से मिला दें रोटावेटर से और ओकर सिंचाई कर दें एक बार। और सिंचाई कैले के बाद तब ओकर अच्छे से जुताई करके पानी चल जाए आराम से आपका जो है वो पौधा विकसित होने लगी।
1: अच्छा, बेड जब बनी तो कितना कितना दूरी पे एक एक पौध लगी।
0: ई 6 फीट पर
1: अच्छा,
0: जी
1: 6 फीट पौध से पौध की
0: पौध
1: दूरी
0: से
1: पे।
0: पौध का दूरी भी 6 फीट और लाइन से लाइन का दूरी भी 6 फीट हम लोग रखी ले।
1: अच्छा, तो अब जैसे पौध लग गए और जो ना आप कहत हुआ कि पौध के जब लगाओ जाला इसे विकास करल आगे
0: होले
1: चल के
0: काफी
1: जी।
0: समय तक वो टिकाऊ होले और मार्केट वैल्यू जैसन रही वैसन आपके लाभ देले।
1: अच्छा
0: जैसे
1: अच्छा
0: अगर 1 एकड़ में 30 क्विंटल का उत्पादन है तो 6 दिन का उत्पादन है मात्र, ये पूरा महीना भर का ना खाली 6 दिन का है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये जब आप महीना भर का आप अगर निकलवा तो महीना में 5 बार टूटी लगभग
1: जी
0: 150 क्विंटल भर।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: ये तीन
1: बिल्कुल
0: महीना में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना में ये यही स्पीड से ही निकला ला। और बकिया का हम जो 5 महीना हो गया हम छोड़ दिले हो हम जुड़ते ना है ओके आप ऐसे समझ ला कि ओके एकदम निगलेक्ट कर दे वो आप खर्चा बर्चा में निकाल देगा तो वो खाली 3 महीना का अगर एकर प्रोडक्शन आपको बच जाए
1: तो इसे पूरा मतलब
0: तो
1: यही से।
0: बहुत अच्छा आप लाभ ले सकला। हम ये कहती 10 रुपया का रेट मिल जाए आपके
1: जी तब भी
0: तो 10 रुपया का रेट भी मिल जाए तो 30 क्विंटल निकलल तो 30,000 के भल तो 10,000 रुपया आपको तोड़ाई लग जाये और ट्रांसपोर्टिंग लग जाये और का लगी तब वो 20,000 बची
1: जी, जी।
0: एक बार के तोड़ाई में
1: जी। कहे के मतलब कि कुंडरू की खेती बहुत ही लाभप्रद बा, अपने किसान भाई लोगन की आर्थिक स्थिति मजबूत करे के खातिर बढ़िया बा। आगे चल करके का कोई और उर्वरक प्रबंध करे के पड़े या जो शुरुआत में आप कह रहे हैं?
0: नहीं नहीं, तो वो मन तो देखें, अगर आप शुद्ध रूप से किसान हुए तो ये आप अच्छी तरह जाना ना कि जोन गाय दूध देवे ओके रोज खाना देवे के पड़ाला, रोज जोन हो के पौष्टिक पदार्थ देवे के पड़ाला, तो वैसे ही फसल है। जब फसल रोज हमें प्रोडक्शन देते हो
1: जी,
0: निश्चित रूप से जब ओकर हम ओकर फुनगी देख के ओकर पत्ती देख के एक किसान अच्छी तरह से समझ लेला कि एके कौन चीज का जरूरत हो, तो वो मतलब खाद ओके देना जरूरी है लगभग हर महीना में।
1: अच्छा, नहीं जैसे एक तो जैविक खाद गोबर आधारित वाला
0: हाँ, उकरे बाद एनपीके 20-20-13 दे दें या 12-32-16 दे दें।
1: अच्छा अच्छा, तो किसान भाई देखें आज अपने साथ रहना कर्मा ब्लॉक की खुटहनिया से कमला प्रसाद जी, और आपके यह सलाह रहल कि अपने किसान भाई जरूर से जरूर कुंडरू के कुछ रकबा अपने खेती में शामिल करें और गाढ़े सकेते कुंडरू बड़ा अच्छा फायदा देकर के ही जाला और ज्यादा में कोई रोग दुख कीट पतंगा के भी समस्या नहीं बा, और आप के देखभाल निगरानी अगर आप समय समय पर करत रहें तो अच्छा मुनाफा आपके मिल सकेला। तो कमला प्रसाद जी आज आप अपने कार्यक्रम में जुटलें और इतना बढ़िया बातचीत भइल, जरूर अपने किसान भाई इस बातचीत से लाभ उठाइए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर,
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया। देखा नखड़ू भैया ये कुनरू के व्यवसायिक खेती के बारे में कमला प्रसाद भैया जो रहना हम प्रगतिशील कृषक उनसे अनुभव साझा करत रहना मुन्ना भैया, पुरान बात बहुत कही रहा है लेकिन अपन पंच भैया लोग जरूर लाभ उठाई हैं, तो दही जा भैया के धन्यवाद। देख चले के धीरे धीरे अपने कार्यक्रम का समय हो चलल है, अब हम लोगन के भी अपने पंच भैया लोगन से विदा लेवे के चाहिए और अगली बैठकी में फिर पंच भैया लोगन से मुलाकात हुई बात हुई तो चले के तो सब पंचन के राम राम, राम।

0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:50 होने को है। अब से कुछ ही पलों में किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद। अपूर्व भैया,
1: हाँ भैया,
0: देखो ये बेरा कितना नेक मौसम हो गया है, अपने ख्यातन तन जाओ तो मन एकदम प्रसन्न हो जाते। काहे तेरे भैया अपनी फसलें बेरा देखो लहलहा रहे।
1: बिल्कुल सही कहा तो भैया, चाहे धान हो या अन्य कोई फसलें हो, सम्मा देखो समय से अगर जो सिंचाई हो जाते है, उर्वरक मिल जाते है, तो उम्मा को दिक्कत ना आवत, एक बढ़िया फसल के रूप में उसका उत्पादन होते है।
0: लेकिन अपूर्व भैया देखो, जब फसलें ख्यातन में यहाँ है तो भैया बहुत जरूरत हो जाते है ई बेरा खाद की, पानी की और जोनी चीजें जरूरत की होती है।
1: बिल्कुल सही किया भैया, और देखो यू कहूँ ना कहूँ देखो चिंता का विषय बन जात रहा है इसे पहले, लेकिन अब देखो जब से सरकार एक योजना लाई है जीके द्वारा, सीधे किसान भाई के खाते पर पैसा आ रहा है, उम्मा चिंता चली गई है। अब योजना का नाम बताओ भैया।
0: हाँ भैया, योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
1: बिल्कुल, अब देखो तमाम पंच भाई अभी वो अपन केवाईसी केवाईसी तक नहीं कराए पाए हैं, तो यह उनकी भी ये जिम्मेदारी है, अपने बैंक का जाओ, अपने लेखपाल से मिलो और देखो केवाईसी कराओ, में कौनो एक पैसा का खर्चा ना होते।
0: हाँ भैया, जाए के अपने जो नजदीकी जनसेवा केंद्र है हुए जाए भैया, बड़ी आसानी तरह करावा जा सकते थे, और देखो तुम्हारे खाता में भैया सीधे पैसा आ जाते 2000 रुपया।
1: बिल्कुल सही कहो भैया, और यू एक दम नहीं आवत है, यू साल में 3 बार आवत है।
0: हाँ, और अपूर भैया हम तो यू कहबे कि देखो जोन पैसा भैया आवत है वो अपन जोन काम काज खाते हैं खेती के वही मा लगाओ, यू नहीं भैया तिलक मुंडन बस यही वही मा जाए के खर्चा कर रहे हो।
1: बिल्कुल सही कहो भैया, देखो इससे पहले कहा होता रहा है हम पंचन का साहूकार नजदीक जाए पड़त रहा है पैसा की खातिर अपनी खेती बचाओ है माँ, लेकिन जब से यह योजना आई है हमका साहूकार के पास जाए की आवश्यकता ना है, बसरते कि हम उनका सदुपयोग करी।
0: हाँ, और अपूर भैया देखो सदुपयोग तब हो जाते हैं जब हम पंचन की यहाँ खबरें जो है पता चल जाए।
1: बिल्कुल सही कहा था भैया,
0: तो भैया आज की खबरें जान लीजिए अभिषेक सक्सेना भैया तेरे।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से बीज बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बीज की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर पीएम कुसुम योजना के बीज बुकिंग पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को बीज बुकिंग की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। किसानों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन करें। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट है agriculture.up.gov.in।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: भैया
7: हाँ पूर्विया,
6: देखो भैया बारिश का मौसम तो चल रहा है, जहाँ यू एक तरफ हम लोगों के लिए फायदे का है, हुए दूसरी तरफ देखो यू थोड़ा बहुत चिंताजनक भी रहते हैं, चाहे वो अपने प्रति हो या अपने जानवरन के प्रति।
7: हाँ बिल्कुल भैया सही कहा, तो अपने हरहा गोरुन का सब ध्यान रखा है, और ऐसे मियाँ देखो भैया चारा की बड़ी कमी हो जाती है।
6: हाँ।
7: और वो जो है अगर सही तरह अपने हरहा गोरुन का चारा मिल नहीं पावत है तो बहुत तनाकेरी बीमारी हो जाती है। तो भैया देखो आज की जो बात है वही मैं अपने पंच भाइन का सुनवाए दिन जाए आग बत कही कि बरसात में पशुओं का खान पान और रख रखाव के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र भैया, तो आओ जाना जाए।
6: बिल्कुल।
8: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं वहां बरसात के मौसम में पशुओं का खान पान और रख रखाव कैसे रखें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक पशुधन विकास डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में पशुओं का खान पान कैसा हो?
9: पशुपालक भाइयों बहनों नमस्कार। बरसात के मौसम में नमी, कीचड़ और दूषित पानी के कारण पशुओं में कई संक्रामक बीमारियां और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा पड़ जाता है। इस मौसम में पशुओं के खान पान और रख रखाव में कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है।
8: जैसे
9: बरसात में नया हरा चारा, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि अत्यधिक मात्रा में न दें, क्योंकि बरसात में केवल हरा चारा देने से पशु में अपच अर्थात इंडाइजेशन, पेट फूलना जिसमें टिम्पैनी और ब्लॉट आते हैं और दस्त की समस्या हो सकती है। हरा चारा 60% के साथ सूखा चारा या भूसा 40% मिलाकर दें,
8: यानी संतुलन बना रहे।
9: हाँ, चारे में हरे चारे और सूखे चारे के बीच में संतुलन रहना चाहिए
8: 60-40 का,
9: 60-40 के अनुपात में। सड़ा गला एवं भीगा हुआ चारा न दें, क्योंकि सड़े गले और भीगे चारे में फंगस यानी फफूंदी लग जाती है और ये फफूंदी जो है पशुओं में जहर फैलाने का काम करती है, जिसको एफ्लाटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और यह एफ्लाटॉक्सिकोसिस न केवल पशुओं के लिए बल्कि पशु के दूध में भी उत्सर्जित होता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
8: डॉक्टर साहब कभी कभी अफरा हो जाता है पशुओं में, वही है क्या?
9: हाँ अफरा हो जाता है, वही है जो गैस भर जाती है। दो तरह की अफरा होता है, एक तो गैस वाला अफरा होता है, एक होता है फ्रॉदी ब्लॉट, झाग वाला अफरा। झाग वाला अफरा ज्यादा खतरनाक होता है बजाय गैस वाले अफरा के।
8: तो डॉक्टर साहब सूखे चारे और हरे चारे में आपने संतुलन की बात की कि 60% हरा चारा हो और 40% सूखा चारा
9: हो। जी,
8: साफ पानी जरूरी है।
9: बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, क्योंकि पशुओं की नांद वगैरह जो है चरही पानी की जो होती है उसकी नियमित सफाई होनी चाहिए, क्योंकि काई लग सकती है जो आगे चल के बीमारियों का कारण बन सकती है।
8: या बासी उसमें भूसा या चारा ना रहे,
9: नित्य प्रति सफाई करनी है। पशुओं को हमेशा पोखरों या जमा पानी के बजाय साफ सुथरा नल का या हैंडपंप का पानी पिलाना चाहिए, स्वच्छ और ताजा पानी।
8: जी,
9: बारिश में पसीने और नमी के कारण पशुओं के शरीर में खनिज लवण कम हो जाते हैं।
8: हाँ।
9: अतः दाने के मिश्रण में 1-2% मिनरल मिक्सचर और नमक जरूर मिलाएं। यदि ऐसा संभव न हो तो चारे के साथ साथ 50-100 ग्राम खनिज मिश्रण पशु के भार के अनुसार और 30-50 ग्राम साधारण नमक प्रतिदिन दें, ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वो अनावश्यक बीमारियों का शिकार न बने।
8: डॉक्टर साहब चरही के पास क्या नमक का ढोका भी रख सकते हैं?
9: हाँ, चरही में सेना नमक का ढेला जो है रख सकते हैं कि जितनी आवश्यकता होगी उतना पशु जो है चाट लेगा।
8: डॉक्टर साहब जो संतुलित आहार है उसमें सूखा चारा और हरे चारे की बात हो गई, दाना मिश्रण कितना देना है इस मौसम में?
9: दाने में जो होता है, सबसे पहली बात जो है, पशु आहार दे रहे हैं या दाना दे रहे हैं तो उसको नमी वाली जगह पर न रखें। अगर नमी वाली जगह पर रखेंगे तो उसमें फफूंद लग सकती है, फंगस लग सकती है, और ये फफूंद युक्त दाना खिलाने से या तो अफरा की समस्या होगी या विषाक्तता टॉक्सिसिटी एफ्लाटॉक्सिसिस की टॉक्सिसिटी हो सकती है।
8: यानी सावधानी की जरूरत,
9: सावधानी की जरूरत है। और दाना जो होता है 1.5 से 2 किलोग्राम दाना शारीरिक भार मेंटेन करने के लिए
8: अतिरिक्त
9: देना चाहिए, जो ये तो देना ही देना है सभी पशुओं को 1.5 से 2 किलो, और प्रति 2.5 से 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना अतिरिक्त देना चाहिए।
8: डॉक्टर साहब, ये तो रही आहार व्यवस्था खान पान की बात, अब ये बताएं कि बरसात का मौसम है, पशुओं का रख रखाव भी महत्वपूर्ण है।
9: बिल्कुल,
8: और उनकी आवास व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।
9: पशुओं का आवास और रख रखाव बहुत महत्वपूर्ण है। पशुशाला को जो है हमेशा सूखा और हवादार रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, फर्श पर पानी का भराव न होने दें जिससे खुरपका मुंहपका या फूट राट की बीमारी से बचाव हो सके, पशु के शेड के चारों ओर पानी जमा न होने दें, ढलानदार फर्श बनाएं, फर्श को सूखा रखें, यदि फर्श कच्चा है तो हफ्ते में 2 बार चूना छिड़कें ताकि जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। नमी को रोकने के लिए पशु सेट में हवा का आवागमन बेहतर है।
8: जी, जरूरी है।
9: अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो नमी बनी रहेगी और पशुओं में भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में।
8: डॉक्टर साहब, जहाँ ईंटे की दीवार है पशुशाला में, तो वहाँ उसकी भी सफाई जरूरी है?
9: उसकी सफाई जरूरी है, चूने से पुताई करनी चाहिए उसकी।
8: अच्छा।
9: चूना जो होता है कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है।
8: डॉक्टर साहब, ये तो रहा रख रखाव और आवास व्यवस्था। इस समय मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है, तो इसके प्रबंधन के लिए करें क्या?
9: हाँ, बारिश में मक्खी मच्छर और किलनी बढ़ जाती हैं। इनसे बचाव के लिए नीम का तेल या फिनाइल का छिड़काव करें और बाड़े में नीम और कपूर का धुआं करें। बारिश की शुरुआत से पहले ही गलाघोटू, लंगड़ा बुखार, बीक्यू, खुरपका मुंहपका एवं लंपी स्किन डिसीज का टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवा लें।
8: डॉक्टर साहब, जहाँ अगर पशु का टीका नहीं लगा है तो क्या अभी भी लग सकता है?
9: हाँ, बिल्कुल लग सकता है। अगर छूटा हुआ है तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और जो पशु छूट गए हैं टीकाकरण से उनको टीका लग जाएगा। वैसे ये टीका कायदे से मानसून से पहले लग जाना चाहिए,
8: सभी टीका,
9: चारों टीका।
8: लेकिन अगर छूटा है तो अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु डॉक्टर साहब से संपर्क करें
9: और वो टीकाकरण करवा देंगे।
8: डॉक्टर साहब, क्या इस समय पेट के कीड़े की दवा दे सकते हैं?
9: पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़ों की दवा अवश्य खिलाएं जिससे कि पेट के कीड़े खत्म हो सके।
8: और जो बाह्य परजीवी हैं उनके प्रबंधन के लिए?
9: बाह्य परजीवी के लिए ब्यूटॉक्स साइपरमेथ्रिन पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है। अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और लगाने की स्प्रे करने की दवा जो है पशु चिकित्सालय से मिल जाएगी।
8: डॉक्टर साहब, इस मौसम में अक्सर थनैला की भी शिकायत होती है?
9: हाँ, थनैला की शिकायत होती है, नमी की वजह से थनैला की शिकायत होती है। थनैला में जो होता है कि पशु का ऐन सूज जाता है, उसमें जो है गर्मी सी महसूस होती है। इसके अलावा जो है कभी कभी जो होता है उसमें से पानी जैसा स्राव निकलता है, कभी कभी रक्त युक्त स्राव निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त युक्त स्राव के साथ साथ छीछड़े और फटे दूध जैसे थक्के निकलते हैं। ये सब मास्टाइटिस की पहचान है। मास्टाइटिस को बचाने के लिए ये करना है कि पशु को दूहने से पहले और दूध निकालने के बाद 1:1000 पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से थन की धुलाई करें लाल दवा से, और दूध निकालने के पश्चात पशु को जो है 1/2 घंटे तक जमीन पर बैठने न दें, क्योंकि 1/2 घंटे तक जो पशु की दुग्ध नाल कैनाल है वो खुली रहती है, उसके द्वारा संक्रमण प्रवेश करता है।
8: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे बरसात में पशुओं के खान पान और उनके रख रखाव के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
9: 94-177-202 94-100-77-202 94-177-202।
8: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का बरसात में पशुओं के खान पान और उनके रख रखाव के बारे में? डॉक्टर साहब,
9: हरे चारे और सूखे चारे का अनुपात जो है 60-40 का अनुपात होना चाहिए। दाना जो है मेंटेनेंस के लिए 1.5 से 2 किलो प्रति पशु होना चाहिए। अगर 2.5 से 3 किलो प्रति दूध पर 1 किलो अतिरिक्त कंसंट्रेट या दाना देना चाहिए। सभी निवारक टीके जैसे HS हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, BQ FMD, LSD, पशु चिकित्सक की सलाह से अनिवार्य रूप से लगवाएं। संक्रमण फैलाव पर रोक बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग करें और उसकी नांद व बर्तन अलग रखें। पशु शेड में नियमित रूप से चूने का छिड़काव करें ताकि नमी और जीवाणु नष्ट हों।
8: डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और बरसात के मौसम में पशुओं का खान पान क्या हो और उनका रखरखाव कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ओम भैया, देखो समय हुई गवाह है कि अपने पंच बहन का अपने कार्यक्रम के माध्यम से गौनई सुनवाई दी जाए।
7: हाँ भैया, देखो इतनी बढ़िया जानकारी हुए बाद अगर गौनई सुने मिल जाते तो वही क्या आनंद दुगना तिगना चौगुना हो जाता।
6: बिल्कुल, आओ सुना जाए।

0: ओम भैया।
1: हाँ पूर्व भैया,
0: देखो आज के किसान के अंतर्गत अपने बीच में है
1: प्रहलाद कुशवाहा भैया, तो आओ जाना जाए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं उन्नाव जनपद के बांगरमऊ ब्लॉक के गनीपुर बेहटा गांव, जहां के प्रगतिशील किसान प्रहलाद कुशवाहा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। प्रहलाद कुशवाहा भैया नमस्कार।
3: जी डॉक्टर साहब नमस्कार, समस्त किसान भाइयों बहनों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: प्रहलाद भैया, आप नॉन मेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब, इस समय हमारे खेत में 2 एकड़ मक्का लगा हुआ है, 1 एकड़ में बाजरा की फसल है, बाकी मूंगफली की फसल है। डॉक्टर साहब
2: कुल रकबा कितना है आपका?
3: जी कुल खेती की जमीन डॉक्टर साहब बात करें तो हमारे पास 2 एकड़ है, बाकी हमने कुछ जमीन जो है लीज पे ले रखी है।
2: तो मक्के की कौन सी वैरायटी है?
3: डॉक्टर साहब बीज है 33-360।
2: हाँ,
3: और दूसरी एक वैरायटी हमने लगा रखी है इसी कंपनी की 33-266, और एक और वैरायटी है क्योंकि है 81-81।
2: तो इन तीनों वैरायटी की क्या खासियत महसूस कर रहे हैं?
3: मक्के की अगर हम बात करें इन वैरायटियों की, तो बहुत ही बेहतरीन वैरायटियां हैं ये। और अभी इस वर्ष डॉक्टर साहब आपने देखा कि बहुत भयंकर बरसात हुई, और ऐसी बरसात में जो है ये वैरायटियां हैं ये सहनशील हैं।
2: अच्छा।
3: और बात करें अगर जो है इन वैरायटियों की, तो ये अन्य वैरायटियों की तुलना में थोड़ा जल्दी तैयार और जल्दी पकने में सहयोगी हैं। अभी हमारी मक्के की ये फसल लगभग डॉक्टर साहब 70 दिन की हो रही है और चबाने योग्य हो गई है। बहरहाल ये जितनी भी वैरायटियां हमने लगा रखी हैं बहुत ही बेहतरीन वैरायटियां हैं, और अभी तक जो है जब से हमने बोया है तब से लेकर अभी तक पौधों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पत्तियां नीचे से लेकर ऊपर तक हरी बनी हुई हैं और पौधा बहुत ही अच्छा और जबरदस्त है डॉक्टर साहब।
2: तो बुआई की बात करें, 2 एकड़ आपका मक्का है, तो बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक मक्के में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देते हैं, जिससे जो है खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं, आधे खरपतवार हमारे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, और जो कीट पतंगे खरीफ की फसल में लगते हैं उनके अंडे बच्चे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई से। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब हम अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की पाँच डालते हैं, उसको खेत में मिला देते हैं, और हम ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बेसियाना का जो है बना लेते हैं पांच में मिला करके।

0: उसको जो है बुआई से पहले शाम के समय जुताई के समय डाल देते हैं, फिर उसके बाद में हम मक्के की बुआई सीधी लाइनों में करते हैं और बुआई के समय हम आधी मात्रा में दानेदार डीएपी खेत को देते हैं और बाकी का जो है बीज जो है हम अपना नैनो डीएपी से शोधित करते हैं डॉक्टर साहब, और बीज का शोधन हम ट्राइकोडर्मा से भी साथ ही में करते हैं। जब हमारी फसल 15 दिन की हो जाती है तब हम उसमें जो है दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, वो भी आधी मात्रा में। शेष जो हमारी होती है स्मार्ट उर्वर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, इसकी जो है हम 30 दिनों पर स्प्रे कर देते हैं। तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है, तो इससे जो है हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है डॉक्टर साहब। और इसमें बात की जाए इस वर्ष डॉक्टर साहब थोड़ा जो है कीट पतंगे की, तो हमने कीट पतंगा देखा इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा कम लगा डॉक्टर साहब।
1: जो भी हानिकारक कीट लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनके लिए आप क्या जैविक उपाय भी अपनाते हैं क्या?
0: हाँ डॉक्टर साहब, हमने जैविक उपाय पूरे खेत में जो है ये नीले पीले स्ट्रिक ट्रैप लगा दिए और फेरोमोन ट्रैप भी लगाए थे, और हमने एक जैविक उपाय बनाया था डॉक्टर साहब जिसमें नीम की पत्तियां थी और आंख की पत्तियां थी और कुछ अन्य पत्तियां थी जैसे धतूरा की पत्तियां थी, तो इन सभी पत्तियों को हमने एक ड्रम में सड़ा लिया था और सड़ाने के बाद में फिर हमने उसका स्प्रे कर दिया था और साथ ही में साथ नीम ऑयल का भी स्प्रे किया था, तो जिसका रिजल्ट डॉक्टर साहब हमको बहुत अच्छा देखने को मिला और रसायन हमको नाम मात्र जो है डालना पड़ा।
1: यानी इस समय आपकी फसल एकदम रौनक पर है?
0: जी डॉक्टर साहब, इस समय हमारी फसल एकदम रौनक पर है और भुट्टे चबाने योग्य हो गए हैं डॉक्टर साहब इस समय।
1: और पूरी फसल में भुट्टे आ गए हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, पूरी फसल में भुट्टे आ गए हैं और दाने भी पड़ चुके हैं, बस चबाने योग्य मक्का हो चुकी है डॉक्टर साहब।
1: चूंकि पिछले कई वर्षों से लगातार आप मक्का उत्पादन से जुड़े हैं, खरीफ मक्का करते हैं, तो एकड़ में कितना लागत गिरती है, उत्पादन एकड़ में कितना ले लेते हैं और आपकी बचत कितनी होती है?
0: देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो है लागत की, तो पिछले कई वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं, तब तो हमको बीज जो है मोल खरीदना पड़ता था, लेकिन अब की साल हमको कंपनियों ने बीज जो है हमको ये सब निःशुल्क दिया हुआ था और इसकी वजह से हमें जो बीज का खर्चा आता था वो एकदम से नहीं पड़ा। हाँ, और बात करें अगर लागत की, तो लागत डॉक्टर साहब पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष तो बिल्कुल हमारी नाममात्र लागत आई है, क्योंकि हमने टोटल जो स्मार्ट उर्वरक का प्रयोग किया हुआ है, दानेदार खाद का प्रयोग तो हमने बिल्कुल आधा ही कर दिया, शेष तो हमने जो है पशुओं की सड़ी हुई पांच डाली हुई थी। और रही बात लागत केवल निगरानी की डॉक्टर साहब आई है, और अगर बात करें एकड़ पीछे लागत हमारी जो कुछ भी आई होगी, मुश्किल का ये मान के चलिए एकड़ पीछे 5000 मुश्किल का मान लीजिए डॉक्टर साहब, इस वर्ष की बात अगर हम करें तो आई है। और उत्पादन डॉक्टर साहब जिस तरह से हमें फसल दिख रही है उस हिसाब से हम एकड़ पीछे लगभग 20-25 क्विंटल तक जो है एकड़ में पैदावार ले लेंगे।
1: तो आपका मुनाफा होगा कितना?
0: अब इस हिसाब से डॉक्टर साहब समझ लीजिए कि एक एकड़ में अगर 5000 रुपए की लागत है, जब 25 क्विंटल हम बहुत कम मान रहे हैं अगर पैदावार हो जाएगी, तो 20 रुपए का भी रेट रखो तो 50000 रुपए का हमारा मक्का एक एकड़ में तैयार हो जाएगा। 5000 रुपए हमने लागत रख दी, शेष 45000 रुपए हमारा एकड़ पीछे बच जाएगा डॉक्टर साहब।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है मक्का उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं तमाम किसान श्रोता भाई बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है महंगी दानेदार खाद के पीछे थोड़ा कम भागिए, और अब आप जो है ये जो मार्केट में नई स्मार्ट उर्वरक आ गई हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। जो लोग कहते हैं कि स्मार्ट उर्वरक अच्छा कार्य नहीं करते हैं, तो वो लोग आकर के हमारे खेत पर देख लें, हम आपको लाइव दिखाएंगे कि देखिए हमारे खेत में स्मार्ट उर्वरक कैसे काम करते हैं। हाँ, स्मार्ट उर्वरक कार्य करते हैं जब आप जो है अपने खेतों में सड़ी हुई पांस डालेंगे और आधी मात्रा में दानेदार खाद डालेंगे, तो स्मार्ट उर्वरक बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कम लागत में अगर आपको अधिक उत्पादन है पाना, तो स्मार्ट उर्वरक को होगा आप सभी लोगों को अपनाना।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा फोन नंबर है 6392-17-96-40 6392-17-96-40 6392-17-96-40।
1: प्रहलाद कुशवाहा, आज आपसे टेलीफोन लाइन के माध्यम से इतनी अच्छी बात हुई, आप अपने खेत पर थे, हम

0: के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संवर, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ पूर्व भैया,
3: अपने किसान भाई का अपने कार्यक्रम का पता बता दो।
4: बिल्कुल भैया, आप किसान भाई देखो अपन कार्यक्रम सुनत है, उनका कई स्वागत है और अपन प्रतिक्रिया देख चाहते हैं, तो अपन जो चिट्ठी पाती का जो पता है वो है भैया कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है भैया 226001।
3: तो मेल का भी पता बता दें जाए।
4: हाँ भैया, मेल का पता है farmandhomeairlko@gmail.com। देखो अब चलक हो रही भैया बिरिया, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
6: मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया नए भारत का विजन। प्रदेश भर में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.0 का शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई उपयोगिता पर की चर्चा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
7: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं

0: का साथ प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सेवा काल को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की कार्य योजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए भारत का विजन दिया है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 से लेकर के उनकी जो ये यात्रा है, ये नए भारत का दर्शन पूरे भारतवासियों को कराता है। एक नया विजन उन्होंने देश को दिया, चाहे वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो, चाहे वह आत्मनिर्भर और विकसित भारत का हो। इसके लिए व्यापक कार्य योजना उन्होंने बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देशवासियों को दिया, वेलफेयर की वे स्कीमें दी जो कभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फ्रेजाइल 5 से दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को स्थापित करने का मॉडल प्रस्तुत किया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की वडनगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और भव्य दिव्य कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 में पुस्तकों के विमोचन के साथ लेखकों से संवाद और उनकी रचनात्मक यात्रा को समझने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 57,600 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। इनमें नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़नी चाहिए और आत्मसात करनी चाहिए।
2: आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, अभी मैं आ रहा था, मैंने बच्चों को एग्जाम वॉरियर फिर वहां वितरित की। हर बच्चे को इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। केवल स्कूली छात्र के लिए ही नहीं है, हर युवा के लिए है, हर नागरिक के लिए है, क्योंकि उसको किसी न किसी अवसर पर किसी न किसी परिस्थिति में उन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है।
1: इस अवसर पर नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद मराठे ने मुख्यमंत्री का शॉल उड़ाकर और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। 9 दिवसीय महोत्सव में पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साहित्यिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल गतिविधियां, कार्यशालाएं और तकनीक से जुड़े आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पावन ग्रंथ समूची मानवता को समरसता, सेवा, सत्य एवं करुणा का अमर संदेश प्रदान करता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य में शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत में मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के शमनीय मामलों का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ मनु कालिया ने आयोजन को उत्साहजनक बताया।
3: बहुत दिनों से लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बहुत ही हमें उत्साहजनक जो रिस्पॉन्स मिला है। पेंडिंग केसेस जो लोक अदालत में जिनका निस्तारण हुआ है, अभी 6 बजे तक जो हमारे पास न्यूज है,

0: तो पेंडिंग केसेस 5,21,428 केसेस का निस्तारण हुआ है, जिसमें फैमिली कोर्ट, एमएसटी, कंपाउंडेबल मैटर्स, सिविल वाद और अन्य श्रेणी के वाद शामिल हैं। और प्री लिटिगेशन के जो टोटल वाद है वो 1,15,24,062 अभी तक हमारे पास आए हैं, कि जिनका डिस्पोजल हुआ है।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन उत्तर प्रदेश और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय एआई मंथन 2.0 का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में हुआ। कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न आयामों, शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, रोजगार और तकनीकी विकास में इसकी संभावनाओं सहित विश्वविद्यालय प्रशासन में एआई की उपयोगिता पर देशभर से आए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालयी प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए एमआईएस, यू डायस प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6,55,00,000 रूपये जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार विद्यालयी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर सुनिश्चित कर रही है। एमआईएस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चों से जुड़ी जानकारी के बेहतर उपयोग को नई मजबूती मिलेगी। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। फरुखाबाद, बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा और अयोध्या, बाराबंकी व तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने आज तहसील रामनगर में सरयू नदी के कटान से प्रभावित ग्राम हेतमापुर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
2: हमने उनकी लिस्ट बना ली जिन जिन के घर अनफॉर्चुनेटली कट गए हैं, उनको 1,20,000 की जो शासकीय सहायता है वो दी जा रही है। हमने जगह भी आइडेंटिफाई की है कि कहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल सहायताएं दी होती हैं, चाहे किट हो या कुछ भी व्यवस्था हो, हमारी प्रशासनिक टीम लगातार यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ संवाद कर रही है।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया नए भारत का विजन। प्रदेश भर में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में दो दिवसीय एआई मंथन 2.0 का शुभारंभ। देशभर से आए विशेषज्ञों ने एआई उपयोगिता पर की चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म ए दिल है मुश्किल में। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: अभी आप सुन रहे थे विशाल एन शेखर के संगीत निर्देशन में अन्विता दत्ता के लिखे के गीत को गाया था सुनिधि चौहान, हरद कौर और राजा हसन ने। फिल्म का नाम था बचना है हसीनों।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को प्रीतम के संगीत निर्देशन में गाया था सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम था धूम 3।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और सुखविंदर सिंह को जिस देश में गंगा रहता है फिल्म में। गीत को लिखा था गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरबजीत का ये गीत। गीत को गाया था अमाल मलिक, अजीत सिंह और तुलसी कुमार ने। गीत को लिखा था रश्मि विराग ने और संगीत दिया था अमाल मलिक ने।

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना यंगिस्तान फिल्म का ये गीत। आवाज थी अजीत सिंह की, गीत को लिखा था कौशल मुनीर ने और संगीत दिया था जीत गांगुली ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और प्रमुख घटनाक्रमों पर आधारित विस्तारित विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉ हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉ हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉ पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे, घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना, इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।
2: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
2: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
4: जी, बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा पत्र है
2: जी,
4: इसको हम सर्वसम्मति से एडॉप्ट कर पाए। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे। परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस दो दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये तीन देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें तीन देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहां पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है मांगता है वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको याद होगा कहा था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक हो, जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए, निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में, तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही

0: बिंदु रहे।
1: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई और
0: जी
1: जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस
0: जी
1: ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टेचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं
0: जी
1: उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म
0: जी
1: की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहां पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो पहले एक हिचक होती थी जियो पोलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
0: आपने बहुत एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अब ये समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
0: अम्बेसडर सज्जनहार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर, हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
3: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
0: जी
3: ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं, और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शंस इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी

0: चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न है,
1: बिल्कुल
0: हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं, परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के
1: जी,
0: साथ। तो जो उन्होंने कहा है, जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है, इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
1: बिल्कुल
0: 40% है इसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं,
1: बिल्कुल
0: रूस पहले था, अभी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया, सभी मिलकर आ गए हैं। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है, परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, जो ये गुट, हालांकि इसमें इतनी विविधता है, परंतु फिर भी ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं। और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते
1: जी
0: जिसकी हम बात कर रहे थे अभी,
1: हाँ
0: तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं,
1: बिल्कुल
0: परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटर ही रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
2: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है। तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इस इसमें?
3: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है और मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों
1: बिल्कुल
3: पर पड़ रहा है, जो सबसे जो जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है। और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे। और बड़ी शक्तियां, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं सुन रही हैं। तो कहां उसमें भारत ने जो

0: इटली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स की एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो
1: बिल्कुल
0: भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपनी अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल
1: जी
0: साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोसिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात, अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि UNSC है, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
2: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है, और ये कितना जरूरी हो गया है।
3: जी, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव
1: जी
3: था जो वहां पर पीस, सिक्योरिटी, शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में। अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है, और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में,
1: जी
3: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

0: और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपने जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो उनको
1: उनको
0: डिसीशन
1: आवाज नहीं
0: मेकिंग
1: मिल
0: में
1: रही, जितना योगदान है उतनी आवाज नहीं मिल रही।
0: उतनी आवाज नहीं मिल रही, और उसको जरूर मिलना चाहिए।
1: जी, एक
0: जी
1: और बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुनते हैं क्या कहा।
2: सी फेरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ, और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन में डिस्रप्शन हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है।
3: ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है,
1: जी
3: और ग्लोबल कॉमर्स जिस तरह से डिस्टर्ब होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रहे हैं, तो कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आप आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध में युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है, और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश, बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और
1: जी
3: अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा।
1: जी अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं, और उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: अम्बेसडर सज्जन हार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण है।

0: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कांटेक्ट्स नहीं रहे, और जो हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे, और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स की समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई, और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ। और फिर पिछले साल तियानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। परंतु आज ये मुलाकात हुई, और मैं समझता हूं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में, और आज की मुलाकात में देखता हूं, देखिए मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के
1: जी
0: द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रेंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में,
1: जी
0: 2020 में तो गलवान हुआ।
1: बिल्कुल
0: तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए,
1: जी,
0: और वहां पर शांति रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
1: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ, जो इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हाँ जी अनुभा,
1: जी आनंद, मैं ये जानना चाहती हूं कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डेक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
2: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभव,
1: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए?
3: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देखिए।

0: के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलें
1: जी
0: और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी
1: जी
0: बता रहे थे कल भी वार्ताएं होंगी,
1: बिल्कुल
0: लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है
1: जी
0: वो मुझे लगता है अपने आप में भारत भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
1: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
3: सुर्खियों में

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरेना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document.
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।

0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
1: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds a series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova. And in US Open, defending champion Aryna Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the

0: shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है. आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
0: Here is more from our correspondent.
2: BRICS member countries expressed deep concern over continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They urged to ensure protection of civilians and civilian infrastructure in accordance with purposes and principles of the Charter of the United Nations. BRICS members further expressed serious concern over deliberate attacks on civilian infrastructure and peaceful nuclear facilities under full safeguards of the International Atomic Energy Agency. BRICS leaders also called for implementation of the relevant UNGA and UNSC resolutions and urged all parties to ensure the maintenance of ceasefire and full and unhindered humanitarian access in the Gaza Strip. They strongly condemned any acts of terrorism as criminal and unjustifiable regardless of their motivation. They condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms. BRICS members reaffirmed commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. With BRICS team, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
1: ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है. हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो. इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 proposals तैयार करें.
0: The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years.
1: अब समय है कि हम BRICS में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले. अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए.
0: The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा. इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है.
0: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. He said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as the chair.
1: Bharat ki BRICS adhyakshata people centric aur humanity first approach par aadharit hai. Resilience, innovation, cooperation और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं. इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है.
0: After the conclusion of the session on the first day,

अज समझे।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म काला पानी में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था एच डी बर्मन ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुने थे लता मंगेशकर को फिल्म नागिन में। गीत को लिखा था राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे हर्षद जयपुरी के लिखे गीत को हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म का नाम था पतीता।

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना असली नकली फिल्म का ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, इस रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा।

0: मा के वृत्तांत का एक अंश तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था। अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा। हम कहीं जा नहीं सकते लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा। लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से, जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गईं। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है। माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल भर रहे हो, पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
0: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी शालजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवंत परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसी सालजों, जो कि सन के गॉड है। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
2: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
3: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
2: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
3: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
4: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सिंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम जक्सान बोलते हैं हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
3: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
5: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंद्रह होता है, जो वो गमछा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंद्रह कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और इसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं। डोमे बेसिकली जो बर्ड है वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
2: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
3: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
2: और मैं नेत्रा।
0: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत, इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगडूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगडूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते। और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
4: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
5: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
4: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
5: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
4: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
5: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
6: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना, पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायुमय पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
7: कम्युनिटी हॉल्स, वायुमय लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
5: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
8: और मैं हूँ प्रांजल।
3: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी

0: और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी डे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित ए.आर. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को

0: विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय अमृत भूषण।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का उबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।